ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 जून सन 2026। सवेरे के 8:56 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है आज का शुभ विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा अपनी संभावनाओं के प्रति आत्मा का जागरण है। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जनरल शर्मा ने कहा 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां, जल स्रोतों के पूजन के साथ कैच द रेन कार्यक्रम का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2047 के विकसित भारत के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री से कल शिष्टाचार भेंट के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी का राजस्थान के प्रति विशेष स्नेह और आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन विकसित राजस्थान के संकल्प को शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री से सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन हासिल किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संगठन से जुड़े विषयों और आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने पत्रकार बातचीत में कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी बना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि इस संबंध में एक मिलते जुलते नाम वाली एक साइट से लोगों को भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। पीआईबी ने आमजन से भ्रामक जानकारी से बचने और आधिकारिक साइट से ही प्रमाणिक जानकारी लेने की अपील की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कल नई दिल्ली से स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर समापन आयोजन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम रखा जाएगा और विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। इस दिन सभी ग्राम पंचायतों में अभियान की उपलब्धियों और स्वच्छ भारत मिशन के नियमों पर चर्चा की जाएगी। अभियान का उद्घाटन करते हुए श्री सीआर पाटिल ने विश्वास जताया कि ये अभियान जन भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं, जबकि अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। ये समाचार आकाश

0: वाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के मूल स्वरूप में बदलाव कर उनमें मादक पदार्थों का परिवहन और उनका गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परिवहन विभाग ने सभी परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती हैं जिनमें नियमों के विपरीत अवैध मॉडिफिकेशन कर प्रेशर और एयर हॉर्न, अनधिकृत लाल और नीली बत्तियां लगाने का काम किया जाता है। ऐसे वाहनों का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों और अपराध में भी किए जाने की संभावना बनी रहती है, साथ ही सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन को 3 दिन के अंदर हटाने की अपील की है। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल स्रोतों और सरोवरों के पूजन के साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वर्षा जल को संग्रहण करने और पेयजल भंडारों के रख रखाव पर आम जन को जानकारी दी जाएगी। 5 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर राज्य भर में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सरकार की इस पहल से राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इधर अभियान के तहत सवाई माधोपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से मानसरोवर बांध पर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें राज्य और केंद्र की जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: कार्यक्रम के तहत जल पूजन, नहरों खालों की सफाई, डीसिल्टिंग, श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा कैच द रेन, जल संचय, जन भागीदारी और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। साथ ही नवीन जल संरक्षण कार्यों के शिलान्यास और पूर्ण कार्यों के लोकार्पण होंगे। विभाग द्वारा वर्षा जल संचय संबंधी तकनीक की जानकारी तथा जल परीक्षण अभियान भी संचालित किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में कई जगहों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। सरहदी जिले जैसलमेर में कल देर शाम तेज आंधी के साथ झमाझम बरसात हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां धूल भरी आंधी से आसमान में गुबार छा गया।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। जिला मुख्यालय के अलावा रामसर, चौहटन, धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई। तूफानी हवाओं के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस दौरान रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही। तूफानी बरसात से तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर के साथ दक्षिणी जिलों में भी देर रात तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। भरतपुर, दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में भी अंधड़ और बरसात से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और टीन टप्पर उड़ गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

इलैया राजा के संगीत निर्देशन में शमिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। और चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और रंजीत बारोट की आवाजों में होलीडे फिल्म का ये गाना, नीलेश मिश्रा और महबूब का लिखा हुआ ये गाना है, और इसमें जो संगीत है वो रंजीत बारोट का है।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आज के चित्रलोक कार्यक्रम का आखिरी गाना वेलकम टू सज्जनपुर, इस फिल्म का गाना मोहित चौहान और मधुश्री की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल शांतनु मोइत्रा का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

0: श्रोता भी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM बैंड 102.9 MHz पर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट या

0: बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साफ हो गुलशन, महका हो गुलशन, चहका हो गुलशन, चलो गुलशन को गुलशन बनाएं। प्लास्टिक को कहें ना, थैले को कहें हाँ।
5: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, एक बार फिर लिए चलते हैं आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: काफी आशा।
1: मणिरत्नम का शुमार सिनेमा की उन प्रतिभाओं में होता है जो फिल्म के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से अपनी बात कहना जानते हैं। यूं तो मणिरत्नम का ताल्लुक दक्षिण भारतीय सिनेमा से है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि भारत और भारत के बाहर भी है।

1956 में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका लगाव होना स्वाभाविक था।

उनकी पहली फिल्म कन्नड़ में थी, पल्लवी अनुपल्लवी। इस बीच उनकी तेलुगु और मलयालम में भी फिल्में आईं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाईं। मणिरत्नम सिनेमा की दुनिया में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे 1986 में फिल्म मौनारागम बनाकर। इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित नायकन, जो 1987 में आई। इस एक फिल्म ने आभास दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने जहां प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की पंक्ति में।

1988 में आई अग्नि नक्षत्रम, जिसने तमिल सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल। 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी रोजा ने।

1993 में निर्मित थेरुडा थेरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

राजनीति में अपने लगाव के चलते मणिरत्नम ने 1997 में बनाई एरुवर और फिर 1998 में उत्तर पूर्व की समस्या को लेकर बनाई हिंदी में दिल से।

मणिरत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा कभी नहीं।

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

0: आज की फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्नम पर। विविध भारती की
1: अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM बैंड 102.9 MHz पर। सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, जिसका विषय है प्रार्थना में बल है।
2: मनुष्य कितना दीनहीन, स्वल्प शक्ति वाला कमजोर प्राणी है, ये प्रतिदिन के उसके जीवन से पता चलता है। उसे पग पग पर परिस्थितियों का आश्रित होना पड़ता है। कितने ही समय तो ऐसे आते हैं जब औरों से सहयोग न मिले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह विचार करने से तो मनुष्य की लघुता का ही आभास होता है, किंतु मनुष्य के पास एक ऐसी भी शक्ति है जिसके सहारे वो लोक परलोक की अनंत सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी बनता है। ये है प्रार्थना की शक्ति, परमात्मा के प्रति अविचल श्रद्धा और अटूट विश्वास की शक्ति। मनुष्य प्रार्थना से अपने को बदलता है, शक्ति प्राप्त करता है और अपने भाग्य में परिवर्तन कर लेता है। विश्वास पूर्वक की गई प्रार्थना पर परमात्मा दौड़े चले आते हैं। सचमुच प्रार्थना में बड़ा बल है, अलौकिक शक्ति और अनंत सामर्थ्य है। प्रार्थना विश्वास की प्रतिध्वनि है। रथ के पहियों में जितना अधिक भार होता है उतना ही तेज निशान वे धरती में बना देते हैं। प्रार्थना की रेखाएं लक्ष्य तक दौड़ी जाती हैं और मनोवांछित सफलता खींच लाती है। विश्वास जितना उत्कट होगा परिणाम भी उतने ही सत्वर और प्रभावशाली होंगे। प्रार्थना आत्मा की आध्यात्मिक भूख है। शरीर की भूख अन्न से मिटती है, इससे शरीर को शक्ति मिलती है।

0: इसी तरह आत्मा की अकुशलता को मिटाने और उसमें बल भरने की सतत साधना परमात्मा की ध्यान आराधना ही है। इससे अपनी आत्मा में परमात्मा का सूक्ष्म दिव्यत्व झलकने लगता है और अपूर्व शक्ति की अनुभूति होती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रार्थना से प्राप्त शक्ति का सदुपयोग आत्मबल संपन्न व्यक्ति कर सकते हैं। नियम पूर्वक की गई प्रार्थना कभी असफल नहीं हो सकती। आत्मशुद्धि का आवाहन भी प्रार्थना ही है। इससे मनुष्य के अंतःकरण में देवत्व का विकास होता है, विनम्रता आती है और सद्गुणों के प्रकाश में व्याकुल आत्मा का भय दूर होकर साहस बढ़ने लगता है। ऐसे महसूस होता है जैसे कोई असाधारण शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है। हम जब उससे अपनी रक्षा की याचना, दुखों से परित्राण और अभावों की पूर्ति के लिए अपनी विनय प्रकट करते हैं तो सदैव प्रभाव दिखाई देता है और आत्मसंतोष का भाव पैदा होता है। असंतोष और दुख का भाव जीव को तब तक परेशान करता है जब तक क्षुद्रता और संकीर्णता से ग्रस्त है। भेदभाव की नीति ही संपूर्ण अनर्थों की जड़ है। प्रार्थना इन परेशानियों से बचने की रामबाण औषधि है। भगवान की प्रार्थना में सारे भेदों को भूल जाने का अभ्यास हो जाता है। सृष्टि के सारे जीवों के प्रति ममता आती है। इससे पाप की भावना का लोप होता है। जब अपनी असमर्थता समझ लेते हैं और अपने जीवन के अधिकार परमात्मा को सौंप देते हैं तो यही समर्पण का भाव प्रार्थना बन जाता है। महात्मा गांधी कहा करते थे, मैं कोई काम बिना प्रार्थना के नहीं करता। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। मनुष्य के जीवन में अच्छी बुरी दोनों तरह की वृत्तियां रहती हैं। आत्मा के गहन अंतराल में तो सत तत्व पाया जाता है। इस शुभ शिव और परम तत्व से एकाकार प्रार्थना से होता है, जिससे आसुरी शक्तियों का लोप और देवी गुणों का प्रादुर्भाव होता है। प्रार्थना से ही अंतरतम में प्रवेश मिलता है और बुद्धि की सूक्ष्म ग्रहणशीलता उपजती है। इस परिवर्तनशील जगत के सारे रहस्य खुलने लगते हैं, सत्य प्रकाशित होने लगता है। सुखी और समुन्नत जीवन का यही आधार है कि हम क्रियाशील भी रहें और देवी विधान से सुसंबद्ध रहने का भी प्रयास करें। असहाय अवस्था में जब मनुष्य को चारों तरफ से निराशा ही दिखाई देती है, शक्तियां काम नहीं देती, भाग्य की कुटिलता पग पग पर सताने लगती है, अपने भी पराये बन जाते हैं, तब प्रार्थना ही उसका मित्र बनती है। प्रार्थना दुर्दिनों का सहारा, अंधियारे का पाथे और दुख की साथी है। जब किसी तरह मनुष्य के प्रयत्न काम नहीं देते तब प्रार्थना से ही उसे बल मिलता है। सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिलता है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन, विषय था प्रार्थना में बल है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: FM 102.9 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल का प्रसारण। अब समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत कार्यक्रम की पहली रचना आपको सुनवा रहे हैं अमर प्रेम फिल्म से। ये भक्ति रचना गाई है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और शब्दों से इसे सजाया है आनंद बख्शी ने।

अमर प्रेम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। संगीत आर डी बर्मन का था और शब्द रचना आनंद बख्शी की। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और साथ में है आपके आपकी रेडियो दोस्त निर्मला। फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जब जब फूल खिले फिल्म से, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। संगीत कल्याण जी आनंद जी का और

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको वक्त फिल्म का ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। संगीत से सजाया है रवि ने और साहिर लुधियानवी के शब्द।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म में। कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवा रहे हैं फर्ज फिल्म से, आवाजें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। संगीत से इसे सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लब्ज लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे फ़र्ज फिल्म का ये नगमा। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम रचना आइए आपको सुनवाते हैं छाया फिल्म से। इस गीत को गाया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है सलील चौधरी ने और शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की। आइए सुनते हैं ये प्यारा और अंतिम नगमा।

लता मंगेशकर और तलत महमूद के गाए फर्ज फिल्म के इस खूबसूरत नगमे के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं श्रोताओं, अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं

0: करनी है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: न कल की चिंता थी न आज का गम, कितने खुश मिजाज हुआ करते थे हम। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। उन दिनों की बात है ये जब बच्चे थे हम। एक बचपन का ज़माना था, खुशियों का ख़जाना था, जो याद तो आना ही था। इस मीठी सी प्यारी सी याद के साथ निर्मला का प्यार भरा नमस्कार करें स्वीकार। स्वागत है सभी सखियों का, सभी सहेलियों का, सभी बहनों का अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में।

सचमुच सखियों, कितना प्यारा और भोला होता है बचपन। और बचपन की वो गर्मी की छुट्टियाँ, भाई क्या ही कहने, खेल कूद मौज मस्ती, बेपरवाह घूमना फिरना, खाना पीना हंसी मजाक, वो दादी नानी की कहानियाँ किस्से, दोपहर के चिलचिलाती धूप के खेल, फिर पड़ने वाली डांट, रात को लाइट गुल हो जाने पर छुपन छुपाई का खेल, और फिर छत पर सोना, तारे गिनना, देर तक भाई बहनों से बातें करना, देर रात तक जागना, आज भी याद आता है। पहले तो छुट्टियों का इंतज़ार और फिर नानी के घर जाने का उत्साह है, लेकिन उससे पहले होमवर्क पूरा करने की मिली हिदायतों से हम में और भी फुर्ती आ जाती थी। और सखियों, कई तो छुट्टियों के शुरू से लेकर आखिर तक होमवर्क को हाथ तक नहीं लगाते थे, फिर टीचर की डांट का डर सताता था, तब मम्मी पापा की मदद लेनी पड़ती थी कि कम से कम आर्ट एंड क्राफ्ट में ही हेल्प कर दे। बहनों, शाम की ठंडी हवा और आउटडोर गेम्स का इंतज़ार दिन भर रहता। शाम होते ही साइकिल चलाना, रेस लगाना, सितोलिया खेलना, गिल्ली डंडा, खो खो, पकड़म पकड़ाई, न जाने कितने खेल हमारी लिस्ट में होते थे। दोपहर में ठंडी शिकंजी, तरबूज और फ्रिज में रखे ठंडे ठंडे आमों का स्वाद हमें तरोताज़ा कर देता था। ये वो दौर था बहनों, जब खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाती थी। यह एक ऐसा ख़जाना है जिसकी यादें आज भी दिल को सुकून दे जाती हैं।

सखियों, हम महिलाओं की पहली प्राथमिकता है घर गृहस्थी। जहां दिन भर के कामों में उलझते सुलझते हम काफ़ी कुछ नया सीखते हैं, यही घरेलू पर जीवन के लिए उपयोगी कौशल हमें आत्मनिर्भर भी बना सकता है। यही काम करने की कुशलता हमें आत्मसंतुष्टि भी देती है। स्वच्छता, साफ सफाई जो हर गृहिणी की पहली पसंद है, जो आराम और सुकून देती है, वहीं प्लांटेशन से भी मन खुश हो जाता है। गर्मी में बालकनी और छत पर लगे छोटे छोटे पौधे और किचन गार्डन की हरियाली आंखों को ठंडक का एहसास कराती है। घर के हर एक सदस्य की स्वास्थ्य की देखभाल और सेहतमंद और पौष्टिक भोजन बनाना, जिसमें कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन का नाप तोल ध्यान में रखना, ये सब हमारी परवाह को दर्शाते हैं बहनों। वहीं कपड़ों की देखभाल, जिसमें कपड़े धोने से लेकर इस्त्री करना, सिलना भी शामिल है। और बहनों, छोटे मोटे मैकेनिक तो हम सब हैं ही, और ये ज़रूरी काम तो आना भी चाहिए, जैसे नल ठीक करना, बल्ब बदलना, चिमनी की खोल कर सफाई, उसकी सफाई करना, इसी तरह एसी और कूलर की जाली वगैरह खोल कर साफ़ करना, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन की तरीके से सफाई करना। आटा चक्की बहनों अगर घर में है तो उसकी भी पार्ट्स खोलकर सफाई आसानी से की जा सकती है। ये छोटे छोटे काम और रखरखाव हमें सुघड़ गृहिणी बनाते हैं। बजट बनाकर खर्च करें, पर्याप्त बचत भी करें। बिजली पानी के बिल का भुगतान समय पर हो, इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखें। बहनों, जीवन में मुश्किलें भी आती रहती हैं, तो आने वाली समस्याओं का शांति से हल खोजें, टाइम का मैनेजमेंट बनाकर चलें, अपनी बात को सही और साफ तरीके से पेश करें, ताकि परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और हाँ बहनों, एक और ज़रूरी बात, इमरजेंसी फ़ोन नंबरों की पूरी जानकारी रखें, ये बहुत ही काम की जानकारियाँ हैं। कार्यक्रम में बातें आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे बहनों। आइए सुनवाते हैं ये संदेश और उसके बाद एक प्यारा सा गीत।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला

0: ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: सखियों, आज के दौर में हर काम के लिए हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। चाहे कोई रेसिपी जाननी हो, कोई गीत संगीत सुनना हो, कोई फिल्म देखनी हो, कोई कहानी कविता पढ़नी हो, सब कुछ हो।

गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बहनों, जो दोपहर में असहनीय हो जाती है, ऐसे में लू लगने का ख़तरा बना रहता है। अगर आपको कंपकपी छूट रही है, आंखें लाल हो गई है या भारी भारी लग रही है, बुखार है, बदन दर्द है, तो लू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में घरेलू उपाय करें बहनों। सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें, कैरी प्याज, पुदीना छाछ या कैरी पानी, नींबू की शिकंजी का उपयोग लू से राहत देगा। और यदि फिर भी तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज ज़रूर लें। गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रखें। वक्त हो चला है बहनों आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नई बातें, रोचक जानकारियों और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तब तक अपनी सखी निर्मला को इजाज़त दें। नमस्कार।

0: महिला जगत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: साफ हो गुलशन, महका हो गुलशन, चहका हो गुलशन, चलो गुलशन को गुलशन बनाएं। प्लास्टिक को कहें ना, थैले को कहें हाँ।
0: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 11 बजे हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

बरसात की रात इस फिल्म से कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रोग्राम रंग दरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में। ये गीत उन्हीं के एल्बम से अक्स एल्बम का नाम था, उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है। साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइंस। इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे, महबूब ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में

गुस्ताख दिल ये गीत अभी आप सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में। अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया था और स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा।

श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM बैंड 102.9 MHz पर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: बेटे, मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि

0: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.9 MHz पर। आइए श्रोताओं, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम

रेशमा की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज में। गीत आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे, अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। लीजिए सुनिए चरस फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

0: फिल्म लव स्टोरी से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में ये गीत। आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी ने इसे लिखा।
1: वो जब याद आए

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में पारस मनी फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

0: फिल्म सनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल यहीं समाप्त होता है।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मेरा चैनल है FM बैंड 102.9 MHz पर। दोपहर का एक बजने वाला है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने आज शपथ ली। कॉलेजियम की 22 और 27 मई को हुई बैठकों में इन पांचों के नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्ति को मंजूरी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन पांचों न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सीबीएसई ने बताया कि ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के पास आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजस्थान में भागीदारी बढ़ रही है। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति के लिए विद्युत उपभोक्ता लगातार इस योजना से जुड़ रहे हैं। योजना के तहत मई महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड

0: 26,632 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो फरवरी 2024 से योजना के शुरू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। राजस्थान डिस्कॉम के सहयोग से चल रही योजना में बीते महीने सबसे अधिक 9,316 सोलर प्लांट जोधपुर डिस्कॉम में लगाए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2,17,000 से अधिक रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और लगभग 1,460 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 सालों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के साथ काम कर रही मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। सरकार के सतत प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जोड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 3-4 दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां अभी कुछ दिन और बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव 5 जून तक बना रहेगा। विभाग ने आज 19 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और आंधी के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई शहरों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
0: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
0: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि

0: ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए?
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें हैं। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी,
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु,

0: मेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे।

0: लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
1: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
2: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
2: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो
4: अरे भेड़िया,
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
8: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
9: लुई पाश्चर
10: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
10: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक

0: हानि उठानी पड़ रही है।
1: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
0: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
2: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
3: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
3: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
3: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
3: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
3: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया

0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
1: सर सर ये टेलीग्राम।
2: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
1: क्या हुआ सर?
2: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
2: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
1: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: आप
4: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
4: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
5: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4

0: बजकर 40 मिनट पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आपने सुना एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम

हंसना सीखो भंवरों से नित गाना, ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है। और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मिडिल मिस्ट रेड एक अद्भुत फूल है, इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेड कलर नाम जरूर है, इसका रेड जरूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज वही है जो कम दिखाई देती है लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधु मालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहां पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए।

कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में है। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं या जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों में मिली जूही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताजा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल, जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है, कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है जो इंसानों के शरीर ढकने का काम करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही गुलकंद के अलावा और मुझे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उपयोग सामने दिख रहा है आपके संदेशों में। मैं इंतजार कर रही हूँ कि और किस तरह से इन फूलों का उपयोग किया जाता है या आप किस तरह से करते हैं, जरूर मुझे लिखिए है।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है, सिलसिला फिल्म से ये गीत सुनवाया गया आपको। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में शिव हरि का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज़्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि इनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफ़ी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिव जी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपनी बगिया में और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफ़ी पसंद है।

हमारी एक साथी लिखती है कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज़ कर सके, पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरोताज़ा रह पाए, जब तक रह सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज़ कर सके। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का टूर किया था, और वहाँ पे फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की, और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि

बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीसकर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुंचे। चलिए हम पहुंचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 MHz पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में होंगे, उसके तुरंत बाद 2:15 पर हिंदी में, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: came through Captain Yoon Jae Yeok. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West, Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे

0: होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने,

0: राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनकेंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली

0: चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। 2:30 हुए हैं श्रोताओं, अब कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में आज मंगलवार 2 जून 2026 को साय 5 से 5:30 के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान, जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉ. शंकरलाल जाट, कार्यवाहक संयुक्त निदेशक कृषि, कृषि विभाग चित्तौड़गढ़। जो किसान भाई इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे टेलीफोन करके विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 01472-294020 और 295020। एक बार फिर याद दिला दें, दिनांक 2 जून 2026 मंगलवार साय 5 से 5:30 के मध्य हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

में जरूर शामिल करेंगे और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी होगा।

3420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना। और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा और हमारी जानी मानी अदाकारा जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोताओं, चार मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आई हैं, इसके पहले भी आप आ चुकी हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खासतौर से विविध भारती से?
2: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी, हम लोग, पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक कानों में गूंजती है,
1: समाचार वाचक
2: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
1: भूले बिसरेगी आज भी प्रसारित होता है।
2: हाँ, और वो सुनते थे और भी मजा आता था, बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
1: जी।
2: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब के सब, तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो

0: टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता, हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूं,
1: जी
0: लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं
1: जी
0: रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्न अंग था। और बचपन क्या आजकल जब
1: जहाँ
0: खासकर
1: बहुत
0: जब
1: सारे
0: हम
1: चैनल्स हैं।
0: बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके,
1: जी
0: गाने
1: बिल्कुल।
0: बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही
1: क्या
0: बचाता
1: बात
0: है।
1: है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है, तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा
0: रेडियो
1: जाता
0: रखा
1: था, और
0: जाता
1: गांव के कई लोग, यहां तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री
0: क्रिकेट
1: सुनने
0: कमेंट्री
1: चलते
0: सुनते हैं।
1: हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। अब बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए, या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने, बताइए
0: नहीं,
1: हमें।
0: क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ के प्रार्थना किया
0: हाँ, और
1: करते
0: जैसे
1: थे।
0: कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का
1: तो
0: कोई
1: भारत
0: भी
1: जीत
0: मैच हो तो
1: जाए।
0: भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम
0: जरूर
1: और
0: जरूर।
1: आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तब तक लो।

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ, और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
0: बड़ा गहरा है,
1: बहुत गहरा।

0: आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चल ही जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है, और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। ये देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया, और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ दो तीन दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
0: जी।
1: और हम लोग जब गर्मियां होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था, और सोंग रिवर होती थी तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव
1: बहुत जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती
0: है,
1: तो हम लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
0: क्या बात,
1: फिर
0: है?
1: मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसन्न है, पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर
0: अच्छा।
1: चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं।
0: लग नहीं रही कि आप शैतान थे, बहुत सीधी साधी लग रही है देखने में,
1: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चले रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादा मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे फोन पे, मोबाइल पे, अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
0: क्या बात है,
1: बंदरों की तरह पेड़ों में, आम, आजकल के बच्चों ने
0: खाना,
1: आप लोग को मतलब या हाँ, तो ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाए, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम, जामुन, अमरूद खाए हुए हैं, उसका मजा ही कुछ और था।

0: बिल्कुल, तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गाँव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए। हाँ। अपने माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
1: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
0: साधन है, माध्यम
1: साधन
0: है।
1: भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था। तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस, और साइंस का ही आईएससी में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, लेकिन रंगमंच करती थी। तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था, एमएससी का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लेबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था। लेकिन आप सोचिए, उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
0: उत्तर प्रदेश था,
1: उत्तर प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इन टू फिल्म, तो मैंने कहा नहीं नहीं हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
0: हूं, अलग ही दुनिया थी,
1: नहीं सोच ही नहीं सकते थे
0: जी।
1: तो खैर मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं एमएससी कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का 3 पेनी ऑपेरा। इतने में एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि एनएसडी भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में, उस टाइम एनएसडी थी, अब तो खैर काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता
0: पुणे में है, और
1: पुणे में है, और लखनऊ में भी अब खुल गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। उसी दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली, तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से एनएसडी का भी इंटरव्यू दे,
0: किसी को बताया नहीं आपने,
1: घर में नहीं बताया घर में, और जब लेटर आया एनएसडी का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
0: एनएसडी करूंगी,
1: एनएसडी में। तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेज करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है, तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का, बेटी का, भटजी की नौनी बहुत होशियार है। अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही, सबने कह रही भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ, मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है, और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
0: नौटंकी,
1: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, ये तो भांड कहते थे, भांड
0: बुरा माना जाता था, बिल्कुल
1: बुरा। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिहर भट्ट शैलेश, वो वहां के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के, तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना, शौक है ना तुम्हारा, तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ मेरे

0: पापा खुद मुझे एनएसडी लेकर गए,
1: क्या बात है,
0: वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहाँ रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी, 250 की स्कॉलरशिप से मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगा, क्योंकि सबके क्लास
1: में बहुत बड़ी बात थी,
0: 250 की स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी, कैसे करी, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने एनएसडी रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपए पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था, एक ग्रेड
1: उसमें बहुत बड़ी रकम थी,
0: बहुत बड़ी रकम उसी में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे मैं, ये मेरा सफर रहा दिल्ली से
1: जी,
0: मतलब देहरादून
1: से दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हमारे सामने हमारी विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समझ।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले, एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें, और उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: जीवन
1: है। अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी, अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं, और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार,

0: गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए। तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
1: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है मानी जी। यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता है, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें की चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर, हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं, तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब, ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं दीदी जी बुआ जी, कुछ भी उगाते हैं सब
0: वो खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई, और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत, ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा, मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है, पहाड़ों में कुछ औरतें काम कर रही हैं।

0: तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है, हमने तो
0: बहुत
1: ये भी
0: कठिन है सारा काम,
1: हाँ
0: लड़कियां और औरतें ही करती है,
1: करती
0: घास
1: हैं,
0: काटने से
1: हाँ
0: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: सब
0: काम।
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में। और जानवर जो आते हैं, भालू, बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: सलाम
0: बिल्कुल,
1: तो हम आपको भी कर रहे हैं
0: अरे
1: कि आप
0: थैंक यू।
1: कहां
0: नहीं,
1: से
0: मैं भी पहाड़ी हूँ, पहाड़ी
1: आई।
0: महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं।
1: जी।
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भोगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
1: क्या बात है सचमुच। तो हम
0: हाँ
1: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस
0: जरूर,
1: प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में। और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी शिवपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी
0: ये मेरे
1: यहाँ।
0: लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना, ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
1: जी
0: खुश हूं, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
1: जी
0: एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन हमारा भी कर्तव्य
1: निजी
0: बनता
1: स्तर
0: है
1: पर
0: निजी स्तर पर, कि
1: बिल्कुल।
0: हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम
0: हाँ,
1: जामुन के, बस वही हम खा
0: वही
1: रहे
0: हम
1: हैं।
0: खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं। हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए। वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना तो एनएसडी रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वो ही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे तो जैसे बैठे रहते, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन वैसे क्या करते हैं, क्या इमेजिन की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से क्या, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
0: कुछ कुछ होता है और
1: कुछ होता है कि रिफत भी और दिलवाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर 1 की बुआ, और परदेश

0: किबुआ और बंधन, बहुत सारे किरदार, और
1: उमराव
0: आजकल
1: जान में भी आपने काम
0: उमराव
1: किया,
0: जान में भी
1: उसमें भी
0: काम किया, और ये
1: खास
0: मेरा जो धारावाहिक है, आपने
1: विवाह।
0: सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था, और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी
0: उसमें
1: वो
0: मेरा
1: बहुत मशहूर
0: किरदार
1: हुआ।
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर
1: जी
0: वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है, ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ, तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है, मैंने नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है,
1: जी। और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि
0: मम्मो
1: कला मम्मो
0: मम्मो, हाँ
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये
0: कोई
1: तो।
0: राज की बात नहीं, ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं, और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है, तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है, और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है,
1: जी
0: शेक्सपियर ने
1: जी
0: भी कहा है कि ऑल
1: एक
0: वर्ल्ड
1: रंग
0: इज अ स्टेज,
1: जी रंगमंच है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया
0: है
1: जी।
0: जिंदगी, तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है,
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने, या
0: जरूर
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं, जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना,
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भी एनएसडी किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आएँ?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आवर्स होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: और
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए
0: जी।
1: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा
0: जी, बिल्कुल।
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल। और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों, पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूफ करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी था, मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला के अगर शादी होती है, शादी तो होगी,

0: और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ
1: दूरी,
0: बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
1: दूरी।

0: और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
1: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी?
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
1: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस लंबी यात्रा
0: है।
1: हाँ।
0: और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है।
1: जी, अब गाना सुनवाए एक?
0: जरूर।
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल।
0: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है, मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर हम जरूर आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से यह प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर।

0: और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारी विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं। आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: और चलती से आई
2: एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर की आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। श्रोताओं को बता दें एक कार्यक्रम संबंधी सूचना जो है इस प्रकार। हेलो किसानवाणी कार्यक्रम आज मंगलवार 2 जून 2026 को साय 5 बजे से 5:30 के मध्य आप सुन पाएंगे। आज का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान, जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शंकरलाल जाट, कार्यवाहक संयुक्त निदेशक कृषि विभाग चित्तौड़गढ़। तो जो किसान भाई अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ से बात करना चाहते हैं, वो हमें फोन करें। इसके लिए नोट करें हमारे नंबर जो है इस प्रकार 01472-24020 तथा 25020। एक बार फिर से याद दिला दें, दिनांक 2 जून 2026 मंगलवार यानी कि आज शाम 5 बजे से 5:30 के मध्य कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
3: पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा फिल्म ओ माई गॉड बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
4: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
3: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
4: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ और बहुत सारे, इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का।

0: तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, सो यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
1: अच्छा
0: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
1: वाह वाह
0: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरण जी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
1: जी
0: और जसपाल मुनि जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के।
1: जी
0: और जवाहर बट्टल जी,
1: हम्म,
0: बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा मैं माफी चाहता हूँ, तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा रहा
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली
1: जी।
0: में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान, और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी,
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर
1: ये सफर इस तरह से चलता
0: जी
1: रहा।
0: दिल्ली में।
1: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं, तो
0: जरूर,
1: आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं,
0: जी
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं,
0: जी जी जी
1: है ना
0: जी जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना,
1: जी?
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है मेरे
1: क्या बात
0: पिताजी के
1: है,
0: साथ।
1: वाह
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ। आप
1: वाह
0: देख रहे होंगे इस पे ये निशान,
1: जी,
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ, उंगलियों
0: तो
1: के,
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह
0: और ये जो थ्रेडिंग है ये
1: जी,
0: देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को, और अपने संगीत को, और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहाँ से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ,
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मांसरी को वेणु भी बोलते हैं,
1: जी,
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित

0: हरिप्रसाद चौरसिया जी हूँ,
1: जी
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके सलीम सुलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया
1: वाह
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की,
1: जी
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है,
1: बिल्कुल
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे, क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है,
1: बिल्कुल,
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, वो उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया, ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं,
1: जी जी
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं, और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे,
1: अच्छा
0: हाँ रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था, और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं,
1: जी जी
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं,
1: जी जी
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवोप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था,
1: जी
0: मेरे भाई ने राग हंसुदनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है
1: वाह वाह वाह
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूं।
1: जी जी जी क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर
0: उनके बारे में भी बताऊंगा।
1: जी

0: पारसी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर, और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले इस शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए,
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे, दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशंस हैं जो पिताजी के करीबी

0: दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
1: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
0: मुंबई आना हुआ
1: जसपाल मोनी जी।
0: हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
1: जी, जी।
0: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
1: जी।
0: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
1: त्याग करना पड़ता,
0: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: उस चीज में मेरे लिए।
1: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल।
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
0: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
1: जी,
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी,
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
1: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी जी जी,
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
0: जी,
1: जी जी। और
0: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
1: जी जी, राजश्री प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
0: एक मिली पिक्चर आई थी
1: जी,
0: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: वाह
0: अन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है,
0: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चरें
1: जी,
0: और
1: बिल्कुल
0: भी बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
1: हाँ,
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं,
1: जी।
0: तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है,
1: जी।
0: तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं,
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूं,
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंटेशन
1: एक्सपेरिमेंट है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका, और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं, और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के
0: जी,
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत

0: इंस्ट्रूमेंट रहा है।
1: जी
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
1: जी पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो
0: हीरो का
1: एक
0: एक बहुत ही शानदार पीस है
1: वो पीस है।
0: जी।
1: और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें वह फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है।
0: वाह,
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे
1: मेटल फ्लूट हो, नहीं ये मेटल फ्लूट है सर,
0: जी, बिल्कुल।
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह।
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है।
0: जी,
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू फ्लूट से
0: डिफरेंट
1: एकदम
0: है,
1: अलग है।
0: बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी
1: मुझे
0: बजाना होता
1: अलग
0: है
1: अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ।
0: जी
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं,
0: जी
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं।
0: जी
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी
0: ये आप देख रहे होंगे, इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में। वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर
0: और
1: सा।
0: ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू,
1: जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं,
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी जी
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा ही देता
1: जरूर,
0: हूँ।
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंद निकल
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: सर एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना
0: जी जी,
1: मैं
0: जी।

0: बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था। इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट करेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
1: बिल्कुल
0: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
1: जी,
0: और बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने इंजॉय किए जिंदगी में।
1: क्या बात है,
0: अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो
1: ये
0: एक
1: तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है।
0: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है, ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है
1: कहां से लाए?
0: नॉर्मल, जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
1: अच्छा,
0: अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक, मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में।
1: जी
0: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे।
1: जी जी
0: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
1: बिल्कुल
0: इसका साउंड में सुना था आपको।
1: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी।
1: जी
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल
0: साउंड जब उठा रहे कोई उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है,

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह।
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक
0: जो
1: में
0: मैं
1: बहुत सुनाई दे रही है
0: बहुत बहुत
1: बांसुरी।
0: बजाया मैंने इसको
1: जी
0: फिल्म म्यूजिक
1: जी
0: में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया,
1: जी
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था।

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: है
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना,
0: जी
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए।
0: जी
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी जी
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी,
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले
0: जी जी।
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात

0: करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
1: बिल्कुल, एक अलग पहचान
0: सारे
1: मिलेगी।
0: गामा पा दा नी सा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं।
1: जी
0: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है,
1: जी जी
0: अब सारे गामा तोड़ी ऐसे भी बजता है तोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
1: वाह,

0: ये भी सारे गाँव है,
1: जज्बात आ गए
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता हो तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी
0: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है
0: जी।
1: इस महफिल को यहाँ रोकते
0: आपका,
1: हुए
0: आपका आपका और अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है कि मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है।
1: मैं समझ सकता हूँ,
0: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी,
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
0: नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो
1: और
0: मैं
1: एक गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई।
0: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूं उनको शायद।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है।
1: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या मैं आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम।
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को।
0: बिल्कुल।
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज

0: हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है इसको
1: बिल्कुल
0: हम विब्राटो कहते हैं।
1: बिल्कुल
0: अब जो उनको विब्राटो जैसा सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको।
1: जी
0: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
1: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था
0: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो,
1: जी
0: जब उन्होंने
1: अरे
0: सुनाया तो मैं पागल हो गया था हंस के।
1: बाप रे
0: खैर, ओ माई
1: जी
0: गॉड कृष्णा थीम फॉर
1: जरूर
0: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस, जिसको लोग बोलते हैं कि मैं, मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी
1: कभी कभी इंडस्ट्री में। क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी
1: सिंगर गा
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है। अब
0: जी
1: जैसे एक वो है, एक कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था, उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके
1: तो ये एक थीम है, और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है, मोमो के धागे वाले का
0: वाह वाह,
1: गाने में
0: बहुत शानदार
1: मैंने
0: पीस है ये
1: आपके लिए स्पेशली, मोमो के धागे।

0: क्या बात है, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परंतु सभी डाले
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
5: मिलेगा।

श्रोता भी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन पर आधारित हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो किसान वाणी कार्यक्रम संभाला सगले किसान भाई ने हमारी पूर्ण भाई की घना घना राम राम
4: और पूरण भाई के साथ साथ आप सब ने आपकी बसंती बहन को भी गणो गणो राम राम सा
3: राम राम बसंती बहन
4: राम राम सा पूरण भाई
3: दोस्तों देखो कार्यक्रम लेना आप हाजिर हुआ और आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन देखो आप किसान भाई को चाहे तो कार्यक्रम लेना वहाँ सजीव फोन इन कार्यक्रम
4: और देखो आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम को जो आपने विषय है वो है खेत बचाओ अभियान और एक और विषय है जैविक खेती को बढ़ावा देवा के लिए आपने कई कई योजना चल रही है सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो आपना ही कार्यक्रम का आज विशेषज्ञ है डॉक्टर शंकरलाल जी जाट कार्यवाहक संयुक्त निदेशक कृषि चित्तौड़गढ़।
4: बिल्कुल सर। तो आपने जो किसान भाई है वह जरूर अन्य विषय पर जानकारी लेना चाहेगा तो विकलिए आप ही आपने जो किसान भाई है उन्होंने फोन नंबर बता दा तो आज का अपने कार्यक्रम में फोन करवा का नंबर है 014-72 कोड नंबर है और फोन नंबर है 294020 और अन्य नंबर पर अगर फोन नहीं लागे तो एक नंबर और है 295020।
3: बिल्कुल साथ देखो किसान भाई या टेलीफोन नंबर पर फोन कर और सीधा आपका विशेषज्ञ जुड़ सके है। तो राम राम सर डॉक्टर साहब स्वागत है कार्यक्रम में आपको
5: धन्यवाद साहब।
3: और देखो आप बात करा कार्यक्रम की शुरुआत में कि खेत बचाओ अभियान कई ऐसा।
5: बिल्कुल साहब जैसा कि अपन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा 1 जून से लेकर 30 जून तक जो अपना खेत बचाओ जो अभियान चल रहा है तो उसके बारे में
3: हाँ डॉक्टर साहब जो आप बात करी कि खेत बचाओ अभियान जो है वो कई ऐसा।
5: खेत बचाओ अभियान अभी 1 जून से लेकर 30 जून तक अपने पूरे जिले में संचालित किया जाएगा। इसमें जैसे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है, सहकारिता विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, ये सभी डिपार्टमेंट मिलकर जैसे वहाँ जो जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं वहाँ पर जाएंगे सभी जो किसान भाई हैं क्योंकि अपन अभी वर्तमान में क्या बहुत ज़्यादा अपन खेत की बात करते हैं तो चाहे फर्टिलाइजर की बात करें चाहे पेस्टिसाइड की बात करें तो बहुत सारा आवश्यकता से अधिक वो यूज़ कर रहे हैं जिससे अपना खेत खुद का खराब होता जा रहा है और खेत के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो सरकार का ये है कि 1 जून से लेकर 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है तो अपना खेत को किस तरह से बचाया जाए उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो इन सभी विभागों की कृषि एवं संबंधित विभागों की जो योजना है उन योजनाओं की भी किसान भाइयों को उनको प्रचार प्रसार किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी।
3: बिल्कुल साथ देखो डॉक्टर साहब आप बात करा कि खेत बचाओ अभियान इसके तहत किसान भाई ने की तरीकों जागरूक कर सके।
5: बिल्कुल साहब जैसा कि किसान भाइयों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि विभिन्न जो स्तर पर जो गोष्ठी

0: भी कृषि परीक्षक, कृषि विभाग के माध्यम से जो कृषि परीक्षक हैं वो आयोजित की जाती हैं। जैसे अभी अपन गर्मी की जुताई करें तो उससे के जो कीट बीमारी हैं, जो उनके अंडाणु है, तो वो नष्ट हो जाएंगे जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी। तो उसके साथ साथ अपन जो देसी अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद है वो भी अपने खेत में डाल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग भी अपन इसमें कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जैविक खेती की तरफ रुझान है तो जैविक खेती भी कर सकते हैं, जो परंपरागत कृषि विकास योजना भी चल रही है हमारी, तो इससे भी जुड़ सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती है वो भी अपने जिले में चल रही योजना, तो ये स्थानीय जो कृषि प्रेक्षक है उनके माध्यम से इन पीके ओए की बात करें चाहे अपन नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो किसान भाई इनसे जुड़ सकते हैं। ताकि इससे क्या होगा कि अपना खेत में जो अनावश्यक किसान भाई पेस्टिसाइड डाल रहे हैं या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, और दूसरा मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मिट्टी की पानी की जांच जरूर कराएं और उसके बाद ही अपन ये इन चीजों काम में लेंगे, तो किस अपना खुद की मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अपना खेत भी बच जाएगा और अपना खुद भी बच जाएंगे, क्योंकि अपना भी स्वास्थ्य, क्योंकि जो उत्पादन होगा उसमें भी मतलब जो उसका रेजिडुअल इफेक्ट है वो आएगा आएगा।
1: अच्छा अपन बात करा कि आप जो किसान है वो अपना खेत को स्वास्थ्य को पत्तो किसान लगा सके,
0: जैसा कि किसान भाई है मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, तो अपना खेत का वर्तमान स्थिति क्या है, कौन सा इसमें किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है। तो सबसे पहले जैसे अपना कोई खेत है तो जिग-जैग मतलब उसमें घूमते हुए अपने 5-7 जगह से मिट्टी का वो इकट्ठी कर ले, एक तगारी ले लें पावड़े से ऊपर से साफ करके, और फिर उस मिट्टी को अपने जो स्थानीय कृषि परीक्षक है उनके माध्यम से भी आप वो कर सकते हैं और आप खुद भी ले सकते हैं। और जब उसको अच्छी तरह से साफ जगह बिछा के, उनको कपड़ा वपड़ा बिछा के या कोई कट्टा बिछा के उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और जो आधा किलो सैंपल बच जाए मतलब उसको 3-4 जैसे अपन आमने सामने कट लगा दिए क्रॉस और आधा किलो सैंपल बच जाए उसको अपन कृषि परीक्षक के वहां जमा करा सकते हैं। साथ ही आप अगर खुद भी लेकर आ सकते हैं, जो चित्तौड़गढ़ लैब है अपने कपासन के अंदर लैब है, तो वहां से अपन जांच करवा के उस मिट्टी का सेहत का पता लग जाएगा, अपने वर्तमान में अपने खेत की अपनी मिट्टी की क्या स्थिति है।
1: अच्छा बात करें अपन साहब क्वेश्चन की मिट्टी की जांच की अपन बात की थी, तो गर्मी की जुताई को कई महत्व है साहब?
0: बिल्कुल साहब, जैसे अभी किसान भाई वैसे काफी जागरूक हुए, लगातार अपन गोष्ठियां भी कर रहे थे, तो गर्मी की जुताई करने से कई सारे फायदे हो जाएंगे। जैसे पुराने लोग कहते थे, अभी जैसे नौतपा चल रहा था कि अभी जब गर्मी की जुताई करेंगे तो बहुत सारे जो अपने पहले फसलें बो रखी है उसके अंदर जो कोई कीटाणु है, जीवाणु है, या कोई जो हानिकारक जो कि उनके अंडे है या उसका पुपा अगर पड़े हुए हैं, तो अभी जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चल रहा है अपन देख पा रहे हैं, 45-46 डिग्री तक भी चला गया था अपने, तो सीधे अगर सनलाइट उसके ऊपर जाएगी तो वो जो अंडे है या उसके पुपा है वो कीटाणु के नष्ट हो जाएंगे, ताकि अपने उसमें नुकसान नहीं करें, आने वाली फसलों को नुकसान नहीं करें।
2: बिल्कुल सर, देखो पूरन भाई डॉक्टर साहब अपन इतनी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, आपने किसान भाई के लिए भी यह बहुत जरूरी है, और जरूरी आपने किसान भाई के लिए देखो अपना फोन नंबर भी है, ताकि देखो वैसे तो किसान भाई आपने बहुत जागरूक है, पर तो भी अगर अन्य विषयों संबंधित वर्ण अगर कहीं भी बात करनी है तो एक बार फोन नंबर आप माने वापस बताना किसान भाई ना, कोड नंबर है 01472 और फोन नंबर है 294020, और अन्य नंबर पर अगर फोन नहीं लागे तो एक नंबर और है 01472295020। तो किसान भाई और बहना जल्दी में जल्दी आप फोन लगाओ, आपके फोन को मंजूर कर रहा है और आपकी समस्या को समाधान करवा के लिए डॉक्टर शंकरलाल जी जाट आपने साथे हैं। और खेत बचाओ अभियान यानी कि आपने खेत में अगर कहीं भी समस्या है तो आप ही के लिए आप अपने विशेषज्ञ के पामनों बातचीत कर सका हां सा।
1: बिल्कुल सा, और देखो डॉक्टर साहब आप बात करें खेत बचाओ अभियान, ये अभियान के तहत आपके जो किसान भाई है वाने की तरीकों अपन जागरूक करें और कई कई विषय न लेन जागरूक करें।
0: बिल्कुल साहब, जैसा कि अभी 1 जून से 30 जून तक पूरे जिले में अपना अभियान चल रहा है, पूरे राज्य स्तर पर भी चल रहा है वैसे, तो किसान भाइयों को वहाँ जो कृषि प्रेक्षक हैं, जो अन्य जो विभागों के जो कृषि हैं उनके संबंधित जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो अधिकारी हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो सकते हैं, चाहे अपने सेक्रेटरी विभाग के व्यवस्थापक हो सकते हैं, और तो ये सब लोग वहाँ मिलकर जो किसानों की गोष्ठी आयोजित करेंगे, और गोष्ठी में उनका अवेयर किया जाएगा किस तरह से अपने खेत को बचाया जाए, किस तरह मिट्टी का नमूना लिया जाए, कैसे मिट्टी की जांच की जाए, कितना इसमें खाद दिया जाए, कितना इसमें पेस्टिसाइड दिया जाए, तो ये एक जागरूकता अभियान है। इसके साथ साथ कृषि एवं जो संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं वो अपनी अपनी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि इन योजनाओं का जो जिनको आवश्यकता है अधिक से अधिक इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके।
1: अच्छा डॉक्टर साहब आप हम बात करें कि जैसे किसान भाई अपना खेत में जो है खाद यूरिया को अधिक प्रयोग करे है तो कहीं इनमें उत्पादन बढ़ जाए?
0: देखो मेरा किसान भाई से ये आग्रह है कि कई बार भ्रांति हो जाती है ऐसे कि जितने ज्यादा खाद डालेंगे अपन खेत में उतनी ज्यादा पैदावार हो जाएगी, लेकिन जो आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज अगर अपन काम में लेंगे तो वो नुकसान ही होगा, खेत भी अपना खराब हो जाएगा और साथ साथ उसमें क्या होगा जैसे वनस्पतिक वृद्धि यूरिया की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो आड़े गिरने वाली समस्या लोजिंग वाली वो हो जाएगी, और पैदावार अपन बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन पैदावार बढ़ेगी नहीं जबकि उससे पैदावार कम हो जाएगी।
1: अच्छा, तो इसीलिए किसान भाई जान के आपने खेत को स्वास्थ्य भी ठीक रहे और पैदावार भी अच्छी हुए तो कई तरीका को खाद व प्रयोग मिले बस।
0: बिल्कुल साहब, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं, एक तो अभी जैसे गर्मी की जुताई कर दी, इस पर फिर अच्छा जो अपना गोबर का सड़ा हुआ खाद है वो अभी गर्मी में डाल के उसको गहरी जुताई करके मिला लेना चाहिए। इसके अलावा अपन किसान भाई कई पहले पुराने जमाने में ये करते

0: थे कि हरी खेती मतलब जो ग्रीन मैन्यूरिंग है वो करते थे, हरी खाद बनाते थे, अब वो जो बिल्कुल इस तरह किसान भाइयों ने छोड़ दिया मतलब, तो वो भी कर सकते हैं अपन। और जब गोबर का अच्छा सड़ा हुआ खाद होगा तो अपने एक तरह से यूरिया डीएपी उसे कम निर्भर रहना पड़ेगा, इसमें आवश्यकता से अधिक नहीं डालें खेत में।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यह जो हरी खाद है यह कही है सर?
0: हरी खाद जैसे अपन पुराने लोग, चाहे अपन सने है, चाहे ढेचा है, चाहे अपन अगर चमड़ा भी कई सारे किसान भी कर देते हैं, मूंग भी कर देते हैं, तो इनको पहले बुआई कर दी, फिर अपने लगभग दो ढाई महीने के आसपास जब फसल हो जाती है तो उसको फसल को मिट्टी पलटने वाले हल से उसी में जोत दिया जाता है, ताकि वो जो फसल अंदर जब बारिश के टाइम सड़ जाएगी और वो अच्छा अपना खाद हो जाएगा, ताकि अन्य जो अपन वैसे बिना उसके कारण कर रहे थे, बिना खाद डाल रहे थे, तो जहाँ अगर गोबर खाद नहीं भी डाल रहे तो भी अपन हरी खाद डालकर इससे भी अच्छी पैदावार आने वाली फसलों में ले सकते हैं अपन, और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
1: आम के किसान है वो हरित खाद की तरीकों तैयार कर सकते?
0: हरी खाद का वही जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे अपन खरीफ में बुआई कर दें, हरी खाद हमेशा वैसे खरीफ के समय में की जाती है, तो जैसे ढेंचा लगा दिया अपन ने, चाहे सनई लगा दी, चाहे अपन ने गंवार लगा दिया, चाहे चमड़ा लगा दिया, उड़द मूंग भी लगा सकते हैं किसान भाई, तो इनको अपन जैसे 50 से 60 दिन की जब फसल हो जाती है, जब फूल आने की अवस्था हो जाती है, तो उस समय इनको मिट्टी पलटने वाले हल से जोत देना चाहिए, ताकि उसके ऊपर क्या होगा कि जब एक आध महीना और बारिश अगर ऊपर गिरेगी तो अंदर जो पत्तियां हैं चाहे उसका तना है वो सारा दब जाएगा जमीन में, वो सड़ जाएगा, तो वो आपकी एक तरह से हरी खाद तैयार हो गई।
1: अच्छा, विभाग द्वारा भी कई अनुदान है इस पे या कोई प्रशिक्षण प्राप्त मिल सके?
0: बिल्कुल, जैसे हरी खाद की अपन बात करें तो कई बार हमने जिले में ढेंचा के मिनी किट दिए थे, इस बार भी अभी ढेंचा के मिनी किट प्राप्त होने वाले हैं, तो अपने जो स्थानीय कृषि प्रेक्षक है उनके माध्यम से इन ढेंचा को प्राप्त कर सकते हैं और वो हरी खाद बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। और जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो कृषि विभाग के चाहे जो ग्राम पंचायत स्तरीय जो वर्तमान में महिला प्रशिक्षण हर ग्राम पंचायत लेवल पर आयोजित किए जा रहे हैं, इसके अलावा कई सर जैसे अभी ये 1 जून से 30 जून तक अपने अपना खेत बचाओ वाली गोष्ठियां भी आयोजित की जाएगी, इसके अलावा कोई भी प्रशिक्षण होता है तो इसमें जरूर इस तरह की जो चाहे ग्रीन मैन्योरिंग की बात करें, चाहे जैविक खेती की बात करें, सभी तरह के जो एक समन्वित कृषि प्रणाली है उसके बारे में जानकारी दी जाती है।
1: अच्छा, जो खेत बचाओ अभियान जो चल रही है किसान भाई के लिए, तो इसमें किस तरीके के किसान जो है भाग ले सके हैं?
0: कोई भी किसान भाई, इसमें मैंने जैसा कि बताया कि एक तो अपन खेत को किस तरह से बचाया जाए उसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, साथ साथ जो कृषि है उनके संबंधित विभागों में जो योजना चल रही है उनको भी किस तरह से उनका आवेदन करें, किस तरह से उनका लाभ ले सकते हैं, उनका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा साथ साथ, तो सभी किसान, कोई भी जो किसान होना आवश्यक है, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है, सभी किसान भाई इसमें भाग ले सकते हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो किसान है अपना जो खेत को स्वास्थ्य है नेचुरल फार्मिंग करन भी सुधार सके है, तो यह नेचुरल फार्मिंग है कही?
0: बिल्कुल साहब, जैसे कि अपने जिले में अभी हमने गत वर्ष लगभग 1,250-1,250 किसान हमने जुड़े थे इस योजना से, और इस बार भी इस बार टारगेट प्राप्त होंगे, तो 250-250 किसानों को हमने समूह बना रखा है, इसके ऊपर हम इनको जो एक काढ़ा यूनिट भी इनको बना के दी थी, उसके ऊपर हमने सरकारी तरफ से 5,000 रुपये अनुदान भी दिया था, और जो एक जैविक खेती मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना PKY भी चल रही है, इसके तहत भी अपने जिले में किसान भाई जुड़े हुए हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो स्थानीय अपने कृषि प्रेक्षक हैं उनसे आप संपर्क करें और इन योजनाओं से जरूर जुड़े, ताकि आप नेचुरल फार्मिंग मतलब प्राकृतिक खेती या जैविक खेती से आप जुड़ सकते हो, जो सरकार की तरफ से जो योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उसका भी फायदा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, देखो प्राकृतिक जो खेती है वहाँ के लिए भी विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे हैं?
0: बिल्कुल साहब, जैविक खेती के ऊपर भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, नेचुरल फार्मिंग में भी जो प्राकृतिक खेती है उसके ऊपर भी जो कृषक सखियां भी हमने पहले हमने यहाँ जिला स्तर से कृषक सखियों को ट्रेंड करके भेजा है, ताकि जो जो ग्रुप बने हुए हैं तो वहाँ वो कृषक सखियों के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वो उनको जो हमने ट्रेनिंग दी वो नीचे लेवल पे उनको ज्ञान मतलब जो भी जब इस तरह की गोष्ठी होती है उसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी देती है, जो स्थानीय कृषि प्रेक्षक हैं वो भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा, जैविक खेती के जो कोई एक्सपर्ट हैं तो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हो गए, TC के वैज्ञानिक हो गए, जो स्थानीय जो कृषि अधिकारी हैं वो भी उसमें जाकर भाग लेते हैं और इन योजनाओं का मतलब बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है।
1: अच्छा, प्राकृतिक खेती पे सरकार द्वारा कोई अनुदान दी है?
0: बिल्कुल, जो 250-250 का जो समूह बनाया था उन प्रत्येक किसान भाई को 5,000 रुपए का अनुदान दिया गया है, ताकि उसे मोटिवेट हो सके और अन्य किसान भी इसका लाभ ले सके।
2: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई आप हम जुड़े हैं, राम राम सा। राम राम सा।
3: राम राम सा।
2: नाम बताओ सा आपको।
3: मैं नारायण देवी बोल रही हूँ, सारा से गंगापुर के पास में।
2: हाँ नारायण जी, कई नाम आप, कई सवाल है सा आपको।
3: अरे मेरे कातरा बार रखा है, इसके ऊपर बपुन बोर्ड आ रही है, बैंगन बार रखा है और भिंडी बार की है।
1: अच्छा नारायण देवी जी, आपको जो उत्तर है वो दे रहे हैं विशेषज्ञ।
0: बिल्कुल सब, आप इमें देखो जटे फपूंद लाग रही है, तो फपूंद के लिए आप किसी भी सिस्टमिक जो अपने फपूंद नाशी आवे, चाहे आप कार्बोडेजियम की बात करा या आपके जो भी जो नजदीकी जो अपने खाद बीज की जो दुकान है, चाहे ग्राम शेखर समिति है, वहाँ ये मिल जाएगा। और जो स्थानीय अपने जो साथी जी हैं कृषि प्रेक्षक, उनसे भी संपर्क करके आप उनसे दवाई लिखवा ले पर्ची आप, और उन जो दुकान पे हैं उस पे जाके मैंने बताया जैसे कार्बन

0: वगैरह है, अगर कोई कीट लग रहा है, जैसे बैंगन में बात करें वो फल के अंदर छेद हो रहे होंगे या तना भी कटाई हो रहे होंगे, उसके लिए भी अपन जैसे प्रोपेनोपॉस है या साइपरमेथ्रिन प्रोपेनोपॉस है, इनका अपन स्प्रे कर सकते हैं और उसको बचाया जा सकता है।
1: तो नारायणी देवी जी, देखो आप मका कार्यक्रम में फोन की दो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सा।
2: और देखो पूरन भाई, अब आपने जो डॉक्टर साहब है विशेषज्ञ पामना जो है अपन इतनी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, आपने किसान भाई के लिए, और जरूर वह ध्यान रखेगा और खेत बचाओ जो अपना विषय है वहीं पे ध्यान देगा। और अब देखो आपने कार्यक्रम में टेम व्यू है मनोरंजन को, तो सुना एक प्यारो सो लोकगीत।

0: वासा किसान भाइयों बहनों देखो प्यारो सो लोकगीत आप ही सुनियो और अब पाछा आप ही डॉक्टर साहब को बातचीत करांगा का आपने जो खेत बचाओ जी पे आप ही बातचीत कर रहे हैं व्हीकल लिए आप ही और बातचीत करा
1: बिल्कुल सर देखो किसान मैं प्यारो सो लोकगीत आप सुनियो और अब देखो बात करा आप का मौसम है बाणो ई टाइम गर्मी को तो गर्मी के बाद देखो बरसात को मौसम भी शुरू हुई तो देखो आप ई टाइम बात करा जल संरक्षण किसान करा आप डॉक्टर साहब बताओ सर
2: हाँ देखो किसान भाइयों से मेरा

0: ये रहेगा कि एक तो अपन जैसा कि बताए मिट्टी पलटने वाला हल से गहरी जुताई करनी चाहिए, तो जब बारिश होगी तो वो बारिश का पानी सीधे अपने खेत में जाएगा, बहकर बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा अपन जैसे फार्म पॉन्ड जो अपन सरकार की योजना चल रही है तो किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे ऊपर जो कच्चा फार्म पॉन्ड दो तरह का होता है, तो कच्चा होता है जैसे अपन 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा, तो इसके ऊपर भी सरकार द्वारा भी जो सामान्य किसान है उनको 63,500 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। और जो अगर प्लास्टिक लाइनिंग वाला भी अपन बनाएंगे तो जो सामान्य किसान है उनको अपन 1,20,000 अनुदान दे रहे हैं। और जो लघु सीमांत किसान अगर हैं, छोटे किसान हैं जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वो किसान भाई भी इस योजना का लाभ से ले सकते हैं। जैसे प्लास्टिक लाइनिंग वाला अगर लघु सीमांत किसान भाई अगर कर रहे हैं तो 1,35,000 तक अनुदान है। और अपने जिले में कई सारे किसान भाइयों ने कई बार 64 फार्म पॉइंट बनाए थे और उनका अभी रवि के अंदर जहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, तो 10-10 बीघे तक किसान भाइयों ने उसको फार्म पॉइंट के पानी से जो वर्षा का जो पानी था उसका उपयोग लेके अच्छी फसलें ली है। मतलब इसके अलावा जैसे फुहारा सिंचाई भी अपन काम में ले सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई भी काम में ले सकते हैं। तो ऐसे अपन पानी को अपना अपना जैसे कहता है ना भी अपना पानी अपने खेत में, तो इस तरह से अपन जैसे मेड़बंदी कर दी छोटी छोटी, या फार्म पॉइंट बना दिया, या जो सोक पेट बना दिए, तो अपने खेत का पानी बाहर बह के नहीं जाए, ताकि खाद भी बाहर नहीं जाएगा और पानी भी अपनी बचत होगी, जमीन के अंदर जाएगा।
1: बिल्कुल साथ, देखो जल संरक्षण के लिए विभाग भी जो है कई योजना चला रखी है और कई अनुदान कई मतलब प्रयास किया जा रहा है।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने बताया भी फार्म पॉइंट जो अपने योजना हो गई इसके हो गई, चाहे अपन फुहारा की बात करें, चाहे पाइपलाइन की बात करें, बूंद बूंद सिंचाई की बात करें, चाहे अपन मिनी फुहारा की बात करें, तो सरकार की कई सारी योजना है। तो किसान भाई इनके आवेदन अपन राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। चाहे मल्चिंग की अपन बात करें, मल्चिंग भी लगाकर पानी की बचत की जा सकती है। तो सरकार की कई सारी योजना चल रही है, तो आप इनका जो कृषि विभाग, उद्यान विभाग, इनसे जुड़ें और इन योजनाओं का आप लाभ लें।
1: बिल्कुल साहब, देखो या तो बात भी आप जल संरक्षण की, अब बात करें आप देखो खरीफ का मौसम की जो है तैयारी किसान भाई की तरीकों का रहा।
0: बिल्कुल साहब, जैसे एक तो अभी किसान भाई खेत में जुताई कर ले में, और अपना जो आधान की व्यवस्था की अपन बात कर रहे थे, चाहे अपन खाद की बात करें, चाहे बीज की बात करें, चाहे दवाइयों की बात करें, तो जो अपन को पता है भी किस खेत में क्या बोना है उस हिसाब से योजना बनाकर अपन समय रहते हुए खरीद ले, ताकि अपन को अनावश्यक बाद में परेशान नहीं होना पड़े और समय रहते उसको बुआई भी हो जाएगी। तो किसान भाई खेत की तैयारी कर ले और आधान की व्यवस्था समय रहते कर ले।
1: बिल्कुल साहब, और अब देखो बात करें आप बीज की, तो उन्नत बीज जो है किसान भाई कटु प्राप्त करे या किसान तैयार करे।
0: बिल्कुल साहब, किसान भाई जो बीज की बात करें तो जो अपने नजदीकी ग्राम सहकारी समिति है, चाहे जो अपने निजी विक्रेता हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपना RSSC हो गया, राजस्थान राज्य बीज निगम हो गया, राष्ट्रीय बीज निगम हो गया, वहाँ से उन्नत बीज प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई अपने स्तर पे भी जो अगर जो संकर किस्में हैं उनका तो अपन को हर साल नया बीज लेना पड़ेगा, लेकिन जो कंपोजिट फसलें हैं उनका अपन किसान भाई अपने स्तर पे भी घर से भी बीज खुद ही तैयार कर सकते हैं और उनका अगले साल बुआई कर सकते हैं।
1: अच्छा, उन्नत बीज के लिए GTM किसान भाई खरीदना, VTM कई सावधानी रखा।
0: देखो किसान भाई से मेरा ये आग्रह है कि कहीं से अपन चाहे समिति से ले रहे हो, चाहे अपन निजी विक्रेताओं से कोई बीज खरीद रहे हो, तो एक तो अपन को उसका पक्का बिल अवश्य लेवें, और उसका जिस जो पक्का बिल अगर आप ले उसमें पूरा विवरण लिखवाएं, ताकि अपन को सही पता रहे कि ये बीज का कहीं अगर बाद में कभी शिकायत आती है, अंकुरण नहीं हो रहा है या पैदावार सही नहीं आ रही है, तो अपन इसकी कहीं भी शिकायत कर सकते हैं उसका अपन, अगर पक्का बिल नहीं होगा तो अपन फिर दिक्कत आएगी।
2: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई आप जुड़े हैं। राम राम सा।
3: राम राम
2: सा। हाँ सर, नाम बताओ सर आपको।
3: नारायण लाल गुजर बोले सर, कंपेयर।
2: हाँ नारायण जी, कई सवाल सर आपको।
3: डॉक्टर साहब ने, शंकर लाल जी ने जो भी प्रोग्राम होने वाले सबनी मारी तरफ राम राम। मतलब मैं फुहारा की फाइल लगाना चाहूँ, अपील भिजवाने वो बारिश फुहारो आवे
0: जी,
3: तो वहाँ की फाइल बाणो लगा सकेगा।
0: बिल्कुल बाणो आप लगा सको, जो अपने ई मित्र है, ई मित्र का माध्यम हो, जिसमें आपने 10 तारीख को पट्टो है, लेकिन आपने कम कम 2 बीघा मतलब 0.20 हेक्टर में आपने लगाना पेड़ी, आवेदन कर दे कि जो इसके साथ लहसुन भी बो सको या अन्य कोई साग सब्जी फसल भी बो सको, तो वो आप जमीन की नकल है, मिट्टी पानी की जांच रिपोर्ट है, और जी कंपनी को आप लगा हुआ चाह रहे अभी को कोटेशन, और ये आप ई मित्र पे ऑनलाइन कर दो, ताकि आपको प्राथमिकता में आपको नंबर आ जाए।
1: दोस्तों देखो कार्यक्रम में आप फोन के दो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा, और अपा शंकर जी बात कर रहे हैं उन्नत बीज की, तो उन्नत बीज खरीदते टाइम भी अपन सावधानी रखनी है, और बीज की जो बुआई कर रहा है वी टाइम अपन कई सावधानी रखनी।
0: बिल्कुल साहब, जैसे अपन बुआई अपन कर रहे हैं, वैसे तो किसान भाई अब सामान्यतः कई बार पहले तो छिड़कते थे अपन वो, अब तो ज्यादातर सभी किसान भाई लगभग अपने सीड ड्रिल से बुआई करते हैं। तो बुआई करते समय भी एक तो कई बार क्या होता है कि जैसे बीज अपन कोई भी, जैसे सोयाबीन की अगर खरीफ की बात करें, तो सोयाबीन की अपन जब खोलते हैं कट्टा कोई भी, तो उसमें क्या जैसे पाउच आ जाता है जो कीटनाशी है, चाहे फफूंदनाशी है, तो उसका किसान भाई क्या करते हैं उसको निकाल के बाहर डोले के या पाली पे फेंक देते हैं, और उसको बीजोपचार नहीं करते हैं, उसको उस बीज में मिलाना चाहिए जबकि मिलाते नहीं वो, तो बाद में आने वाले टाइम जब बुआई करते हैं तो कई सारे कीट बीमारी का प्रकोप उसमें ज्यादा रहता है, तो एक तो ये पछले अनुसंधान से यही देखा गया कि

0: किसान भाई कोई भी अगर उसमें कट्टा खोल रहे हैं अपन और अगर दवाई का पाउच निकलता है तो उसको कहीं फेंके नहीं, उसको बीजों में मिलावें और उसके बाद ही बोई करें ताकि अपन को अनावश्यक जो कीट बीमारी का जो ज्यादा प्रकोप होगा उससे कई दिनों तक एक तरह से वो कवच का काम करेगी और अपन को 10 से 15 20 दिन 25 दिन तक उसको बचाए रखेगी। मतलब
1: बिल्कुल साधन
0: बीजो उपचार करके ही बोई होना चाहिए।
1: तो खरीफ की अगर अपन अच्छी बोई करनी है तो देखो अपन सावधानी भी बरतनी है। और बात करें अपन डॉक्टर साहब के वर्मी कंपोस्ट जो है वहाँ को कई महत्व है सामने खेती।
0: बिल्कुल, जो किसान भाई अपन जैसे बात करें जैविक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसको अपन अल्टरनेट की खाद अपन को देना है। तो अपन कई बार किसान भाई जो गोबरी खाद डालते हैं वो सड़ी हुई नहीं होती है तो लाभ की बजाय नुकसानदायी भी हो जाता है भाई, उसमें जब दिमाग की समस्या हो जाती है दूसरे कीट बीमारी कीट वगैरह भी लग जाते हैं। तो अपन अगर इसको गोबर देसी खाद जो है गोबर है गोबर को अपन इसको वर्मी कंपोस्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका अपन काम में लेंगे तो क्यारे बना दिया या अपन कर दिया आगे आगे अपन ब्रॉडकास्टिंग कर दी या फिर आगे छांट के फिर निराई गुड़ाई कर दी तो ये इसकी एक जो क्षमता है वो अच्छी मतलब बढ़ जाएगी और जो अपन गोबर के मुकाबले इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाएगी और ये पैदावार के लिए भी अच्छा फायदेमंद रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें इन्हें बढ़ावा के लिए आपके सरकार की कई योजना है।
0: जैसे मैंने बताया आपको, एक तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसके से भी आप जुड़ सकते हैं किसान भाई, उससे भी सरकार की तरफ से 5,000 तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती है उससे भी उसके माध्यम से भी किसान भाई विभाग से जुड़ सकते हैं, उसमें भी अनुदान दिया जा रहा है। तो इन जो स्थानीय अपन कृषि प्रेक्षक हैं उनके माध्यम से संपर्क करें और इन योजना जैसे PKY हो गई चाहे अपन प्राकृतिक खेती हो गई तो इन योजनाओं का आप लाभ लें और जैविक खेती को और खुद कम से कम मेरा ये आग्रह रहेगा सभी किसान भाइयों से कम मेरे कहने पर एक बीघा अपने घर पे खाएं, उतनी तो एक बीघा ऐसा खेत रखो जिसमें कोई दवाई नहीं डालें कोई खाद नहीं डालें। इनकी भारत सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार की तरफ से कई सारी योजना चल रही है तो किसान भाइयों को धीरे धीरे इनके तरफ बढ़ना पड़ेगा ताकि अपना खुद का मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, अपना खेत भी बचें, अपन खुद बचें और जो और जो हैं अपने रिश्तेदार हैं चाहे और भी जो अपने लोग बाग हैं जो अपने यहाँ से जो उत्पादन हो रहा है उससे अपन उन लोगों को बचा पाए। मतलब
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप किसानों ने आप कई कहना चाहोगा खेत बचाओ अभियान के बारे में?
0: मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा जहाँ भी अपने पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर इस तरह की जो किसान गोष्ठियाँ जो आयोजित की जाएगी 30 जून पहले उनमें आप अवश्य भाग लेवें और जो अधिकारियों द्वारा जो वहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा अलग अलग विभाग के अधिकारी आएंगे एक्सपर्ट आएंगे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट आएंगे तो वो आपको जो जैविक खेती के बारे में प्राकृतिक खेती के बारे में कैसे अपने खेत को बचाया जाए कैसे अपने मिट्टी का सेहत बनाए रहें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी तो आप उसमें अवश्य भाग लेवें और इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेवें ताकि आपका खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहें अपने खेत का स्वास्थ्य भी ठीक रहें और अपनी योजनाओं का भी अपन लाभ लेकर अपनी आय में भी सुदृढ़ कर सकें बढ़ाया जा सके।
2: बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब आप इतनी बढ़िया जानकारी आपने किसान भाई ने दे दी और जरूर किसान भाई भी ध्यान रखेगा कि जैविक खेती अपनाएगा और जो भी योजना सरकार द्वारा चल रही है वहाँ को लाभ लेगा। और देखो डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
2: पूरण भाई देखो अब आपने किसान भाई के इतनी बढ़िया जानकारी दी है डॉक्टर शंकरलाल जाट जी।
1: बिल्कुल सर, और कार्यक्रम में देखो अब बात करा पा आज का मंडी भाव की, तो आज निम्बाड़ा मंडी का भाव रहा है गेहूं का 2,417, 2,701, मक्का पीले का भाव रहा 1,778, 2,031 और चना का भाव रहा है 5,200, 5,650 रुपये।
2: और एक साथ ही निम्बाड़ा मंडी में सरसों को भाव रहा है न्यूनतम 6,770 रुपये और उच्चतम रहा 7,575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब। और एक साथ ही बात करा मूंगफली की, तो मूंगफली को भाव रहा है निम्बाड़ा मंडी में 6,500 न्यूनतम और 9,200 रुपये उच्चतम।
1: और लहसुन का भाव रहा देखो 5,017,500 रुपये, इसब गोल का भाव रहा 10,500, 20,477 रुपया। तो देखो ये तो भैया आज का मंडी भाव और आज का मौसम की आप बात करें किसान भाई, तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 84%, हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा।
2: और इसके साथ ही काल के मौसम को अनुमान लगावा तो काल को अधिकतम तापमान रेवा की संभावना है 38 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री और नमी 86%, और काल हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब रेवा की संभावना है।
1: बिल्कुल सर, और देखो अब अपना कार्यक्रम को टेम्पुरो तो ले वाए जत आप सब लगाने माइक दे के रूम गणा गणा राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। शाम के 5:30 हो चुके हैं और समय हो चला है हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और आपके साथ हूं मैं आपका अपना रेडियो साथी रोहित सुथार। साथियों, हम सभी ने अक्सर सुना है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। हमारी कही गई एक छोटी सी बात किसी का दिन भी बना सकती है, तो वहीं हमारा एक छोटा सा ताना किसी के दिल को गहरे जख्म तक दे सकता है। दोस्तों, ताना देते वक्त हमें शायद ये लगता है कि हमने बड़ी चतुराई दिखाई या मजाक किया, लेकिन सुनने वाले के आत्मसम्मान को इससे बड़ी ठेस पहुंचती है। बार बार ताने मारने से अच्छे और मजबूत रिश्ते भी खोखले हो जाते हैं। चाहे वह दोस्तों का ग्रुप हो या परिवार, तानों की वजह से आपस में दूरियां बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों, जब हम किसी ऐसे इंसान को ताना मारते हैं जो पहले से संघर्ष कर रहा है, जैसे कोई छात्र जिसे कम नंबर मिले हों या कोई युवा जो नौकरी ढूंढ रहा हो, तो हमारा ताना उसके बचे कुचे आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। ताना मारने से पहले दोस्तों एक पल के लिए खुद को सामने वाले की जगह रखकर देखें। दोस्तों, कहते हैं शब्दों में बड़ी ताकत होती है। इनका इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी को आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए करें। तो दोस्तों, आज ही संकल्प लीजिए कि अपनी बातचीत से तानों को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे और अपने शब्दों में मिठास घोलेंगे।

0: भिलवाड़ा जिलों की प्यास भी बुझाई और वहाँ की सभ्यता को एक नई पहचान भी दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोठारी नदी की, जिसका सफ़र शुरू होता है राजसमंद जिले के देवगढ़ में अरावली पहाड़ियों से। ये मुख्य रूप से दो जिलों राजसमंद और भिलवाड़ा में बहती है। लगभग 145 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये बनास नदी में जाकर मिल जाती है। साथियों, भिलवाड़ा जिले में इस नदी पर मशहूर मेजा बांध बनाया गया है, जो भिलवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों के लिए पीने का पानी का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। साथ ही इस नदी के पानी से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सींचा जाता है, जिससे स्थानीय किसानों के घरों में खुशहाली आती है। दोस्तों, कोठारी नदी सिर्फ पानी नहीं देती, ये इतिहास को भी समेटे हुए है। इसके किनारे पर बागोल नाम का एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ पाषाण काल के अवशेष और प्राचीन पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारी नदियों की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम नदियों को साफ रखें। तो साथियों, अगली बार जब कभी आप भिलवाड़ा या राजसमंद की तरफ जाएं, तो इस ऐतिहासिक और जीवनदायिनी नदी को एक बार मन से प्रणाम जरूर करें।
1: ये रातें, ये मौसम।

दोस्तों, गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे मौसम में जिस एक चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा बचकर रहने की ज़रूरत है वो है हीट स्ट्रोक यानी लू। दोस्तों, जब हम लंबे समय तक तेज़ धूप और गर्मी में रहते हैं तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे चक्कर आना, तेज़ सिरदर्द और कमज़ोरी जैसी परेशानियाँ होने लगती हैं। गर्मी के दिनों में साथियों, प्यास न लगे तब भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। बाहर निकलते समय हमेशा हल्के रंग और सूती कपड़े पहने। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जब धूप सबसे तेज़ होती है, ज़रूरी न हो तो बाहर निकलने से बचें। साथ ही छा

लस्सी, नींबू पानी आदि का सेवन करें। ये चीज़ें शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने देती। तो साथियों, ये थी कुछ बातें जिन्हें आप ध्यान में रखिए। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, गर्मी का आनंद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था।

0: HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: आइए साथियों, बात करते हैं हाल ही में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। हाल ही में सीकर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में दुर्लभ सिस्तान सैंड बोआ प्रजाति का सांप मिला। ये प्रजाति हमारे देश में पहली बार दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान द्वारा विशेष अभियान उमंग 7 का आयोजन किया गया, जिसकी अवधि 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन, बाल बंधुआ मजदूरी रोकना और बाल तस्करी पर नियंत्रण लाना है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए AI संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया।

साथियों, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों को सरकार की योजनाओं का समान और उचित लाभ मिल सके। इसी कड़ी में पीएम विकास योजना एक अनूठी पहल है, जिसमें कारीगरों को उनकी पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार के हिसाब से ढालने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही नए जमाने की नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा में आइए आपको सुनवाते हैं मीरा भजन। लीजिए सुनिए नेहा काला के स्वर में ये पहली रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शिल्पी माथुर को, कार्यक्रम है विविधा। आप सुन रहे हैं मीरा भजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक और रचना। स्वर दिया है दीपशिखा शर्मा ने।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 206। गायक स्वर है शोभना राव और रविन्द्र साठी के, वहीं संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरि पर्वत के समीप पहुंचे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गायन। भाग संख्या रही 206, गायक स्वर रहे शोभना राव और रविन्द्र साठे के। वहीं संगीत निर्देशन रहा सतीश भाटिया का।
1: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ 102.9 FM मेरा चैनल के प्रसारणों को अब आप मोबाइल ऐप के जरिए कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, फिर जाइए लाइव रेडियो पर। रेडियो के बहुत सारे चैनल, उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए अपना पसंदीदा आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ चैनल को और फिर मस्ती सुनिए हमारे पंचरंगी प्रसारणों को कहीं भी कभी भी।

0: ट्यून कर ले जरा।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही आपके संदेशों पर आधारित कार्यक्रम संदेश आते का समय रहेगा शाम 7:45। इसी क्रम में सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजकर

कर 15 मिनट पर कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। एफएमएड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। शाम के 6:27 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। तो कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रही। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: अरे ज्ञानचंद, तुम बोतल हाथ में लेकर कहां भागे जा रहे हो, वो भी इस वक्त?
2: अब क्या बताऊं हरी भाई, 3 दिन से पेट में गड़बड़ हो रहा है, एकदम से प्रेशर बनता है। इस वक्त भी प्रेशर बहुत जोर से बना हुआ है, इसीलिए भागकर जंगल जा रहा हूँ।
1: तो क्या तुमने अपने घर में शौचालय नहीं बनवाया?
2: कैसी बात करते हो हरी भाई, घर में और शौचालय, शिव शिव शिव शिव शिव, घर में शौचालय बना लिया तो घर की रिद्धि सिद्धि चली नहीं जाएगी।
1: ये भी कोई बात हुई ज्ञानचंद? अरे अपने सेठ धनालाल को ही ले लो, उनके घर में एक नहीं 4-4 शौचालय बने हुए हैं, और आज उनके घर में किस चीज की कमी है बताओ?
2: लेकिन हरी भाई।
1: अरे देखो ज्ञानचंद, अब लेकिन बेकिन छोड़ो और अपने घर में शौचालय बनवाओ। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने घर की औरतों के बारे में सोचो, और अब तो घर में शौचालय बनवाने के लिए सभी ग्राम पंचायतें अनुदान भी देती हैं।
2: ठीक है हरी भाई, मुझे आपकी बात सही लगती है।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया।

0: और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें, यही सही मायनों में विकास है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसर देकर उनका जीवन बदला है। श्रीमती मुर्मू ने देश में प्रतिभा की पहचान, पोषण और विकास के लिए सही मंच देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, खासतौर पर जनजातीय समुदायों के युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सुल्तानपुर सहित 3 स्थानों पर 39 करोड़ 18 लाख रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें इंडोर स्टेडियम, पुलिया निर्माण और बूढ़ादीत के विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी है। श्री बिरला ने कहा कि हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठा वो गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कॉम्पिटिशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सोशल मीडिया में श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार अवसरों और खेल संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहन पर भी चर्चा की गई। साथ ही माय भारत के माध्यम से युवाओं को बढ़ावा देने संबंधी रूपरेखा पर भी विमर्श किया गया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इनकी सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य भर के पेट्रोल पंप डीलरों से संवाद भी किया। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग की 3 दिनों के अंदर की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च और अप्रैल महीनों के बाद 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि लोगों को ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई गलतियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ले ली है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। CBI ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर पिछले महीने हुई नीट UG परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने

0: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद शपथ ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा आईडी बनाने में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इससे नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो रही है। आभा किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का डिजिटल माध्यम है। इस डिजिटल स्वास्थ्य पहचान से चिकित्सा की पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित होती है। 14 अंकों की इस यूनिक हेल्थ आईडी से पुरानी बीमारियों, लैब रिपोर्ट्स और दवाइयों का ब्यौरा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत ने बताया कि इसमें 14 मानकों पर जांच की जाएगी। इससे किसानों को खाद के सही उपयोग में सहायता मिलेगी। इस पहल से मिट्टी के पोषक तत्वों और सिंचाई जल की गुणवत्ता भी परखी जाएगी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही फसलों की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। उधर भीलवाड़ा में भी खेत बचाओ अभियान के तहत किसान संगोष्ठी रखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में एक पटवारी अंकुश कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने खाते के विभाजन के एवज में 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और घूस की पहली किस्त के रूप में ये राशि ली थी। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न शहरी निकाय एक दूसरे की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नवाचार साझा करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता लाने के लिए नियमित कार्यशालाएं करने पर भी बल दिया। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 27 अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र चलाए जा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद राज्य के ज्यादातर भागों में दिन और रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे मापा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। हालांकि अंधड़ और तेज हवाओं से कई जगह व्यापक नुकसान भी हुआ है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात आए अंधड़ से कई गांवों और ढाणियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कल और परसों कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की बढ़ोतरी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी रहने से अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत का अनुमान है। अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि कल चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नाकाबंदी प्वाइंट बनाए गए। इन पर 74,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई और 15,000 से अधिक चालान

0: बांटे गए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 कल नई दिल्ली में दिए जाएंगे। समारोह में देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कृत होने वाली पंचायतों के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण भी देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वीरता और विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। सूर्य नगरी जोधपुर में बीते महीने भीषण गर्मी के बीच विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों के साथ सरकारी समारोहों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के जोधपुर दौरे और विकास से जुड़े समाचार भी खास रहे। जोधपुर शहर ने पिछले दिनों अपना 568वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना का समारोह बीएसएफ कैमल फ्रंटियर बैंड कार्यक्रम के साथ हुआ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली ने किया। इस दौरान मेहरानगढ़ में पर्यटकों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। तूर जी के झालरे पर दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया। मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में भी कार्यक्रम हुए। जोधपुर के रातानाड़ा सर्कल पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण समारोह रखा गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों जोधपुर की कई रेलवे सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तारित किया गया। वहीं जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच बढ़ाए गए। जिला मुख्यालय पर 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले में शिरकत करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जोधपुर स्थित भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोको शेड देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। अप्रैल 2026 तक यहां से 181 इलेक्ट्रिक इंजन कमीशन किए गए। शेड से निकले इंजनों से उत्तर पश्चिम रेलवे की 80% यात्री ट्रेनें और 61% मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत फीच गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति तथा जैविक और कंपोस्ट खाद के महत्व की जानकारी दी। काजरी की ओर से ग्राम सोइत्रा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज परिहार ने किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी आर चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार मिला है। देश भर के 28 केंद्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान, उन्नत तकनीक विकास और तिल की 9 उन्नत किस्मों के विकास के आधार पर मंडोर को ये सम्मान दिया गया। जोधपुर रेल मंडल की ओर से आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों की बदौलत 10वें स्वच्छता पखवाड़ा

0: छिंदवाड़ा अभियान में उत्तर पश्चिम रेलवे ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। रेलवे बोर्ड के मूल्यांकन में उत्तर पूर्व रेलवे पहले और दक्षिण रेलवे तीसरे स्थान पर रहे। जोधपुर में मारवाड़ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन हुआ। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर ध्वज पूजन के साथ शुरू हुई परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत इन दिनों विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 5 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जल सेवा, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल की महत्ता बताई जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में जिले के ओसिया में रिचार्ज शाफ्ट का लोकार्पण और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन शांति और कौमी भाईचारे की दुआ मांगी गई। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,00,000 बत्ती आभा आईडी बनार, देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश के कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना रो फायदो लेवण वाला ने संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति कहो कि समाज रा सगला तबका रो माली तौर और भणाई लिखाई रा हलका माय विकास असली बरकत है। श्रीमती मुर्मू कहो कि वजीफा री सरकारी योजना मा जनजातीय समुदाय रा नौजवाना ने आला दर्जा री भणाई लिखाई और मौका देर वानी जिंदगी माय बदलाव लाई है। वे देश माय प्रतिभा री पिछाण, पोषण और विकास सारू सही मंच मुहैया करावन री जरूरत माथे जोर दीनो। राष्ट्रपति नौजवानों वारी जड़ाओं जुड़िया रहवन बाबत कहो।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा, सुल्तानपुर समेत 3 ठोड़ा करीब 39,18,00,000 रुपया खर्चों कराई चा विकास रा काम जनता ने सौंपया और नुआ कामारी शुरुआत कीनी। आमाय इंडोर स्टेडियम और पुलिया बनावन रा काम में शामिल है। ये मौके बिरला कहो कि सरकार किसाना ने हमारी उपज रा वाजिब दाम दिरावन सारू खेती बाड़ी आधारित उद्योग ने बढ़ावो दे रही है। वह कहो कि सरकारी मूल माथा गेहूं री खरीदी री आखिरी तारीख ही 6 जून कर दी रिची है। श्री बिरला कहो कि हर रहवासी री मूलभूत जरूरतां पूरी करण सारू सरकार लगातार जतन कर रही है।
3: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पे बैठा वो गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50,00,000 की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में। आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सागे मुलाकात कीनी। सोशल मीडिया रे जरिए मुख्यमंत्री बतायो कि मुलाकात रे दौरान राज्य में नौजवाना रा कौशल विकास, नौकरी धंधा रा मौका और खेलना रा बारा में चर्चा करी जी। श्री शर्मा

0: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सा गई चर्चा कर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जाओं जुड़ी जानकारी दीनी। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रिपूर्ति सामान्य है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज राज्य में ईंधन रिपूर्ति व्यवस्था रो जायजो लीनो। इस दौरान वह प्रदेश रा पेट्रोल पंप डीलर सागे बातचीत कीनी। तेल कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो कि रसोई गैस री टंकियां बुकिंग रा तीन दिन में पुगाई जा रही है। वे बतायो कि मार्च और अप्रैल महीना पाछे 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर री बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग रा सचिव अम्बरीश कुमार कहो कि लोगों ने ईंधन रिपूर्ति रे बारे में चिंता करण री जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का न्यूलिरीजी परीक्षा री कॉपियां माए मिली गलतियां रा सत्यापन और कॉपियां ओजू जंचावन री अर्जी देवन सारू पोर्टल आज शुरू फेंक्यो। पोर्टल 6 जून ताई खुल्यो रहवेला। CBSE रे मुजब ओसु बीतो जांचोड़ी कॉपियां रे प्रति ले चुक्या विद्यार्थियां सारू मुहैया कराई चियो है। दिल्ली री एक अदालत नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माए आरोपित 5 जणा ने जेल माए बंद राखण री मियाद ई महीना री 15 तारीख ताई बधा देनी है। CBI ई मामला माए हाल ताई 13 जणा ने गिरफ्तार कीना है। ध्यानजोग है कि पेपर लीक रा आरोपां पाछे लाडला महीना भी नीट UG परीक्षा रद्द कर दी रीजी ही जो 21 जून ने पाछी ली जावेला। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट रा 5 नवा जजा ने पद री शपथ दिराई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली सागे आला वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम री सिफारिश पाछे केंद्र री मंजूरी शपथ दिराई ची। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी बनावण रा मामला माए राजस्थान देश माए दूजी ठोड माथे आ गयो है। राज्य माए हाल ताई 7,19,00,000 बत्ती आभा आईडी बनाती रीची है। आभा आईडी किनी रहवासी रा स्वास्थ्य रो रिकॉर्ड हिफाजत उन राखण रो डिजिटल जरियो है। 14 अंक वाली ई यूनिक हेल्थ आईडी जूनी बीमारियां जांच रपट और दवाइयां रो ब्यौरो राख्यो जावे है। जिणो जरूरत पड़िया डॉक्टर मरीज री स्वास्थ्य री लाडली जानकारी आसानी हासिल कर सके है। केंद्र सरकार खेत बचाओ अभियान रा तहत जोधपुर रा कृषि विश्वविद्यालय में मिट्टी और पानी की जांच सरू प्रयोगशाला शुरू कीनी है। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत बतायो कि इनो मिट्टी रा पोषक तत्व और पाणत सारू पानी री गुणवत्ता री परख करी जावेला। जिनरी जांच रपट रा मुजब किसाना ने वैज्ञानिक राय दी जावेला। 14 मानका माथे करी जावन वाली ई जांच किसाना ने सही तादाद माए खाद लेवन माए मदद मिलेला। खेत बचाओ अभियान रा तहत भीलवाड़ा माए किसान गोष्ठी राखी ची। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर में एक पटवारी ने 50,000 रुपया री घूस लेता थका पकड़ लीनो। वहां माथे खाता रा बंटवारा री एवज में 1,00,000 रुपया री घूस लेवन और घूस री पहली किस्त रा तौर आ रकम लेवन रो आरोप है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी रा कामकाज रो जायजो लीनो। अहलकारां सागे मीटिंग माए वे साफ सफाई रा काम माए जनतारी भागीदारी ने मजबूत बनावन रा हुकम दीना। मुख्य सचिव कहो कि न्यारा न्यारा शहरी निकाया ने एक दूजा रा काम करन रा बेहतरीन तरीका और नुआ कामा री जानकारी देवनी चाहिए। अरबे मौसम राज्य रा घनखर हलका माए आंधी बारिश बीचे पारो सामान्य 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतर गयो है। अंधड़ और जोरदार बायरो बाजन रे कारण कई ठोणा नुकसान री शंका है। माणा जैसलमेर खबर नवीस बतायो कि वठे काल रात आया अंधड़ रे कारण कई ठोणा बिजली री पूर्ति ठप वेगी।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और डाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें

0: मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन सफलता के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: मौसम विभाग आज जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ हल्का माए बादलहरी गाज सागर बिरखा भेवन और कठा कठा ओला पड़बारा आसार जताया है। महकमा रा मुजब काल और 4 जून नई बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग माए कठा कठा आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। इन दौरान कठा कठा तेज अंधड़ सागे बिरखा भेवन री संभावना है। मौसम महकमा रा मुजब आंधी बारिश के कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार है। प्रदेश में अपराधन

0: इन दौरान कठे कठे तेज अंधड़ सागे बिरखा भेवन री संभावना है। मौसम महकमा रे मुजब आंधी बारिश के कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार है। प्रदेश में अपराधन की रोकथाम असामाजिक तत्वों माथा लगाम लगावन और यातायात नियमों की पालना तय करण सारू नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो के काल चलाई चिया ई अभियान रा तहत 74,032 गाड़ियां री जांच कर और 15,032 चालान काटी चिया। देश री 42 बेहतरीन पंचायतों ने काल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 नवासी चावेला। कार्यक्रम में 34 ग्राम पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार देर नवाजी जावेला। नवाजी जावन वाली पंचायतों की ओर वाना कामकाज रा तरीका री जानकारी दी जावेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 सारू 31 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जियां दी जा सके है। वो इनाम वीरता विज्ञान पर्यावरण समाज सेवा और कला समेत न्यारा न्यारा हलका माए बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करने वाला बच्चा न दियो जावे है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4-8 जून ताई अहमदाबाद में रखी जावेला। अमरीका रो योगा एथलीट दल ही इनमें शामिल भेला। अमरीकी योगा एसोसिएशन और USISF रा संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यों वाला अमरीकी दल री अगुवाई करेला। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड बीचे मौजूदा सीरीज रो तीजो और आखिरी T20 मैच आज रात 11 बजे शुरू भेला। वो मैच इंग्लैंड रा टॉन्टन में भेला। भारत यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिक्स रा अर्धशतकारी बदौलत सीरीज रो पहलो मुकाबलो 38 रनु जीतियो हो जबकि दूजा मैच में इंग्लैंड ने 26 रनु जीत मिली है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद पूर्ति सामान्य मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,32 आभा आईडी बनार देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। FM 102.9 MHz पर श्रोताओं शाम के 7 बजे है। अब प्रस्तुत है समूह स्वरों में देशकान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम भाग संख्या 2। विषय रहेगा किसान कल्याण। साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत, ये आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जिसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर एंड फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। पार्टिसिपेंट्स आर शेखर अय्यर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड एसपी सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। द मॉडरेटर इज सोनू सूद।
2: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and

0: digitization to discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector. We are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर, कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों, कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो,
1: जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो,

0: किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटिफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू फील हैज यू नो hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: Yeah, you know, for over a decade, you know, Government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan right. of Viksit Bharat. Yes. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it. And that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched. Several projects, they are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, yes. that India should be annadata for the entire world. Yes. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, unko madad kiya gaya hai, unko haath pakad ke khade hone ke liye, jo bhi sadhan ki zarurat hai, wo sare cheeze bhi dete hue, भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम यू नो टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज देन इंश्योरिंग मार्केट एक्सेस चैलेंजेस इन मार्केट एक्सेस सेटिंग अप ऑफ वेयरहाउसेस सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस एंड ऑल्सो रनिंग ग्रीन ट्रेन्स Yes. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so yes. that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. Right. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts.
1: Yes.
2: Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming.
1: Right.
2: So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
3: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले

0: सेहत जांची गई। सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई।
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
0: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे यह पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता पंप होता है या नहरों से जाता है वो सिंचाई के काम में आता है, लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया। और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। में तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने, इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: जैसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
0: कहते हैं, किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में

0: सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है, तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that we revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले

0: 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। अब समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है। और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कारपोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में का, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is a one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak, and this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular

0: approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected.
1: Yes.
0: And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And
1: yes.
0: take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention.
1: Yes.
0: Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. Mm. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now,
1: yes.
0: these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops.
1: Mm.
0: You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishv hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports. $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hain, unka share bhi badhkar 20% ko paar kar gaya hai.
0: No.
1: So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hamara thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तो, जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं. और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा. जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड

श्रोताओं, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना यही तपस्या है। तप के लिए जंगल हो ये जरूरी नहीं, अंतः मन स्वच्छ और शांत हो ये जरूरी है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार मित्रों। कार्यक्रम संदेश आते हैं लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी अंकिता श्रीवास्तव। तो आइए करें शुरुआत इस संदेश के साथ। सबसे पहले हम संदेश ले रहे हैं सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। आपने राजकुमार फिल्म के गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है। ये फरमाइश आपने हमें हमारे फेसबुक, जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, उसके माध्यम से हमें भेजी है। और इसी फरमाइश में शामिल हम कर रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन अपार को। साथ ही पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि अश्विन, मंगलाबेन राजेंद्र। और साथ ही आमा खोरडा जिला करवधा से राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह, दक्ष प्रिया महामाया, गीत सरगम।

सूर्या। तो आप सभी ने मिलकर इस फिल्म की हमें फरमाइश भेजी है कि गीत हमें सुनाया जाए। साथ ही गुजरात से, गांधीनगर से जी के परमार साहब भी इसमें शामिल है। तो आइए आप सभी की मिली जुली फरमाइश को पूरा करते हैं इस गीत के साथ।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आपने पुकारा और हम भी चले आए हमारा कार्यक्रम संदेश आते हैं लेकर। आज जो हमें फरमाइश मिली है उसमें ज्यादातर हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने सुमन कल्याणपुर को नमन करा है, हम भी उन्हें नमन करते हैं। सुमन कल्याणपुर भारत की एक अत्यंत लोकप्रिय दिग्गज पार्श्व गायिकाओं में से एक रही। 1960 से 70 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सदाबहार और जादुई गाने दिए। उनकी आवाज की शुचिता और सुरों की समझ के कारण उन्हें भारतीय शास्त्रीय और सुगम संगीत में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। हम भी उन्हें नमन करते हैं और साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो अगला संदेश हमें मिला है फेसबुक के माध्यम से, और गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगीश और युद्धव, और निकाह फिल्म की जो फरमाइश आपने भेजी है इसी फरमाइश को हमारे एक श्रोता भी लिख भेजते हैं, उनको हम शामिल कर लेते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार। तो आइए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश इस गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आते हैं, आपकी रेडियो साथी अंकिता के साथ। आपको बता दें कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और जीमेल आईडी के माध्यम से हमें आपने भर भर के संदेश भेजे हैं, तो आपके इस अपार स्नेह का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी में से कुछ संदेश हम यहाँ शामिल भी कर रहे हैं। अगला संदेश अडार नांद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश और इसी क्रम में गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार, प्रीति, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुना भाई, पिंकी आर्यन और कृष्णा पीहू। तो आप सभी ने गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर रोटी फिल्म के इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है, तो आइए सुनते हैं ये फरमाइश।

श्रोताओं, अगला जो हमें संदेश भेजा है जो हमारे जीमेल आईडी से हमें मिला है, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजय लक्ष्मी और साथ ही जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इसी क्रम में कृष्णा पार्क दहली से सुखविंदर सिंह और सिटी दीवाना,

आपने हमें जो आपकी फरमाइश अभी भेजी है वो है प्रोफेसर फिल्म के गीत की, और इसी फरमाइश में हम एक और श्रोता को जोड़ लेते हैं, प्रेम जी भाई जगन्नाथ धाम पुरी कटक नगरी उत्कल प्रदेश कलिंग ओडिशा से। तो आइए जो जगह जगह की फरमाइश है उन्हें हम एकजुट कर एक सूत्र में पिरोकर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से सुनवाते हैं।

श्रोताओं, हम चलते हैं कार्यक्रम की तरफ और बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ, जो हमें मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ठेंगिया नमन अपार का। आपने सितमगर फिल्म से मौसम प्यार का रंग इस गीत की हमें फरमाइश लिख भेजी है और इसी में हम शामिल कर रहे हैं पोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा और साथ ही लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। हम आपकी इस फरमाइश को जरूर पूरा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यानी जीमेल आईडी, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो आप सभी श्रोताओं से जरूर निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप सभी एक बार में एक ही हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल से उस पर अपनी फरमाइश लिख भेजें। कई दफा एक ही फरमाइश को कई जगह लिखने से हम थोड़ा परेशानी में आ जाते हैं और आपकी फरमाइश को पूरा करने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो निवेदन आप तक पहुंचेगा और आपका जो निवेदन है, आपकी जो फरमाइश है, उसे हम पूरा करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम में जो अगला संदेश हमें मिला है जीमेल के माध्यम से, उसको हम शामिल कर रहे हैं, भेजने वाले हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक अनिल, जयवीर सिंह ठाकुर कैथल, अमनदीप, साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टू और रिंगनी, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आपने नदिया के पार फिल्म की फरमाइश हमें लिख भेजी है, इसी फरमाइश में हम शामिल कर रहे हैं चर डोगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। तो आइए मिल बैठ के सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

कार्यक्रम संदेश आते में अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं। राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर पवन राजेश अजय और राहुल का मंजू का आपने आंखें फिल्म से गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है, तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर की गीत।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो संदेश हमें फेसबुक के माध्यम से मिला है उसको हम शामिल करते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, कीतिका और भानु प्रकाश, तो आइए आपकी फरमाइश को पूरी करते हैं अनाड़ी फिल्म के इस गीत के साथ।

तो श्रोताओं, जिन हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों को हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए उनके नाम इस प्रकार हैं। नदकोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल चिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी दिशा। साथ ही पटेल नगर बालोट से डॉक्टर रमेश कुमार, जाजोरिया गीता रानी, ककनदीप आरजू, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द, विजेंद्र, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। और साथ ही पदमपुर जिला श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका।

इसी क्रम में शिवाजीनगर देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोरबोड़खेड़े, शिवसागर इदराताई, शकुलीताई दीपाली राम, सुनैना पवन, स्वराज तनुज, जिला खरगोन सनावत एमपी से अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित रितु मुकेश जगताप, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुललकर, रतन माला आरती गौरी ओम कुमार और लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ शौर्य, धनवंतरी नगर जबलपुर एमपी से अशोक सिंह, सुनीता प्रीति गुड़िया वेदा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद शफीक पवार, बेंजी कोस मोहम्मद पवार, अलमास बानो मोइन, छोटू मोहम्मद हसनैन।

0: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश पूनम ज्योति शिवांश वर्मा और परिवारजन, और साथ ही टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, वामिका वाणी, मीरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता गौड़, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत, मनु, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश, राहुल, बनियापारा धमंतरी छत्तीसगढ़ से राज्य से रामचंद माखीजा, काफी भाई।
1: किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो।
0: तो श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रत्येक मंगलवार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और जीमेल पर अपना नाम, शहर का नाम, फरमाइशी गीत लेकर भेजते हैं और हम उन्हें करेंगे कार्यक्रम में शामिल। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। समय भाव के चलते हम सभी श्रोताओं के तो फरमाइशी गीतों को शामिल नहीं कर पाए, उनमें से कुछ एक के नाम हमने यहाँ लिए, लेकिन हाँ, धन्यवाद हम उन सभी श्रोताओं को जरूर करेंगे जिन्होंने हमें संदेश भेजे, अपना स्नेह हम तक पहुँचाया। तो इस स्नेह में कोई कमी नहीं हो, हम चाहते हैं कि ये स्नेह ऐसा ही बना रहे, आपका जो स्नेह प्रेम है हमें और हमारे कार्यक्रम को मिलता रहे। इसी के साथ आज का ये सफर बस यहीं तक। अंकिता को अनुमति दीजिए, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश आते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं समय हो चला है कार्यक्रम सुगम संगीत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहली भक्ति रचना। स्वर दिया है अनूप चलोटा ने।

रहीम कहते हैं, किसी बड़े आदमी से मित्रता हो जाए तो अपने छोटे मित्र का तिरस्कार न कीजिए, उसको भूलिए नहीं।

सभी जानते हैं रहीम कृष्ण भक्त थे। उनके स्वभाव के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं।

के रहीम स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए हैं, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ, क्योंकि विशेषता थी। रोज सुबह घर के बाहर बैठ जाते थे दान करने के लिए, भावना के साथ मुट्ठी भर भर के दान करते थे। कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जा सकता था। लेकिन एक विशेषता थी, दान करने के लिए जैसे जैसे वो अपने हाथ उठाते थे तो अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये रहीम कैसा दान करते हैं, दान भी करते हैं और इन्हें शर्म भी आती है दान करने में, निगाहें झुका लेते हैं। इस बात की चर्चा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी तक बात पहुंची। उन्होंने सुना, मन ही मन मुस्कुराए और दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास भेजी।

रहीम ने पढ़ा, समझ गए गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें क्या नहीं मालूम, शायद मुझसे कहलाना चाहते हैं। दो पंक्तियां उन्होंने भी नीचे लिख दी,

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। भक्ति रचना को आगे बढ़ाते हैं और आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पोडवाल के स्वर में ये रचना।

0: सच की लहर ज्ञान की झलक आकाशवाणी 890 भारत की जीवंत आवाज।
1: श्रोताओं, ये सुनते हैं एक और भक्ति रचना, स्वर दिया है जुबिन नौटियाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुकम संगीत FM बैंड 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक

0: अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: We categorically reject
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में

0: अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026

0: के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइल

0: से पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को सीबीएसई में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Government forms panel to probe into procurement of services for on-screen marking system by CBSE. Appoints Lokhande Prashant Sitaram as CBSE chairperson. India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 international at Taunton tonight. And now the news in detail. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. The OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. In another development, Senior IAS Officer Lokhande Prashant Sitaram has been appointed as the new Chairperson of the CBSE. Mr. Sitaram was earlier serving as an Additional Secretary in the Home Ministry. His appointment was made in place of Rahul Singh, who has been transferred to the Department of Agriculture and Farmers Welfare as Additional Secretary. The government has also appointed Varun Bharadwaj as Secretary in the CBSE. His appointment has been made in place of Himanshu Gupta, who was serving as the Secretary in CBSE. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books.
2: Soon the portal was made live. Malicious actors attempted to disrupt services through a barrage of cyber attacks. The CBSE said that the most recent being a denial of service attack attempt causing 1.5 million hits on the portal within a matter of 2 minutes and more than 1 lakh attempts of unauthorized file access. The board said that its teams remain vigilant and responsive to ensure that the students are facilitated in all ways possible. based on students' feedback, CBSE has further refined the plan.

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना बाबा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने लता मंगेशकर का गाया लिबास फिल्म का गीत सुना। भूल गुलजार के थे संगीत आरडी बर्मन का। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की।
1: मेरा

0: राजू।
1: राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ कर नहीं।

0: आवारा हूँ।
1: राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूं क्या कर सकता हूं मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर मेरे बेटे में।

राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर, वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और यह सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है, और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

फिल्म आज कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सकी। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात।

बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और कैमरामैन राधु करमरकर। राधु करमरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था, आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हों। इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था और आज भी है।

अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आईं और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आईं। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भंवरा, सरगम और बांवरे नैन।

ये छह की छह फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मायार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की चार फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों फिल्में

अगला साल राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कह लें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की तीन फिल्में आईं, धुन, पापी और

राह जो राज कपूर की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आह फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद इसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आह ही साबित हुई।

राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं।

सारी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया, लेकिन सबको सिखा गया शो मस्ट गो ऑन।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम। राज कपूर साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। स्वर शोध और आलेख अमरकांत का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:52 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।